0: ஆகாஷ்வாணியின் எஃப்எம் கோல்டு 100.1 மெகாஹெர்ட்ஸில் இனி தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகேஷ் குமார் பல். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ से भारत उन देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां परिचालन में हैं। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशनों के साथ देशभर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। केरलम के इन स्टेशनों से राज्य में रेलवे के बुनियादी ढांचे और यात्रियों की सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। इन उन्नत स्टेशनों में आधुनिक प्लेटफॉर्म, बेहतर भवन, आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष और यात्रियों के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनका उद्देश्य यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा।

0: कहना ठंडी सांस में अब भूल वो जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। प्रस्तुत पंक्तियों में हिंदी साहित्य में छायावाद की प्रमुख स्तंभ कवित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि मनुष्य को आलस्य का त्याग कर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। महादेवी कहती हैं कि इंसान को अपनी पुरानी असफलताओं और दुखों को याद करके ठंडी सांसें नहीं भरनी चाहिए। जब हृदय में दृढ़ संकल्प और कुछ करने की आग होगी, तभी आंखों में आने वाले मनुष्य के आंसू भी सार्थक हो जाएंगे। कवित्री मनुष्य के मन के भीतर जीवंतता की अलख जगाने के लिए कहती हैं कि यदि इस सफलता रूपी साधना के मार्ग पर चलते हुए तुम्हें हार का भी सामना करना पड़े, तो वो तुम्हारी हार स्वाभिमान और विजय की पताका बन जाएगी। ठीक उसी प्रकार जैसे एक पतंगा दीपक की लौ में जलकर राख तो हो जाता है, लेकिन वो राख उस अमर दीपक की निशानी बन जाती है। महादेवी आगे कहती हैं कि हे कर्तव्य पथ के साधक, तुम्हें संघर्षों और कांटों रूपी अंगारों की शैया पर भी अपने कोमल मन से प्रेम और शांति के फूल बिछाने हैं, अर्थात तुम्हें विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य और कोमलता बनाए रखते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो श्रोताओं, सफलता के सौंदर्य रस से सनी हुई इन स्वर्णिम पंक्तियों को हम भी अपने जीवन में उतारें और आगे बढ़ते रहें सफलता के मार्ग पर, मनुष्यता के मार्ग पर। श्रोताओं, आज के दिन की इस खूबसूरत और सुहावनी प्रभात में आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। कार्यक्रम आज सवेरे के इस अंक में आपके साथ मैं हूं मुकेश कुमार बल, और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी वीसी प्रमोद। प्रमोद, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार मुकेश, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। We bring to you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we give the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 17th of July.
0: जी, तो क्यों ना प्रमोद अब शुरुआत करें कार्यक्रम आज सवेरे अब तक के मुख्य समाचारों से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा।
1: That's right, Mukesh. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate 6 redeveloped Amrit railway stations in Kerala through video conferencing today, along with 75 other Amrit stations across the country. The 6 stations in Kerala are expected to significantly enhance railway infrastructure and passenger amenities across the state. The upgraded stations feature modernized platforms, improved station buildings, contemporary waiting halls, and enhanced passenger facilities aimed at providing a more comfortable travel experience. Air-conditioned waiting halls have been introduced at the Angamali and Talasheri railway stations. The redevelopment has also been planned with a focus on improving connectivity to Kerala's major tourist destinations, cultural centers, and pilgrimage sites.
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में एनडीए के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का

0: सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है।
1: The National Testing Agency NTA has declared results of NEET UG 2026 re-exam. Over 11 lakh candidates have qualified for admission to undergraduate medical, dental, Ayush and allied programs. Scorecards of all candidates are available on the official website neet.nta.nic.in. NTA said that the result has been declared in time so that the medical admission and counseling calendar for candidates stays on track. A total of close to 20 lakh candidates appeared for re-exam this year at 5,440 centers in 551 cities in India and 14 cities abroad.
0: गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते ATS ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक ATS के हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी गुजरात में आतंकी नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश में थे।
1: In United States, Trump administration has imposed new visa restrictions to bar far-left terrorists from entering the country. U.S. Secretary of State Marco Rubio said that foreigners who finance, incite or aid and abet far-left terrorists are enemies of America's civilization and they are not welcome in the United States. The new visa restriction policy aims to undermine the political foundations of free and self-governing societies, utilizing bombings, assassinations and other forms of terrorism to silence speech, limit political opposition, change policy outcomes and sabotage political processes.
0: और क्यों ना अब अपने श्रोताओं को खेलों की दुनिया की जानकारी दें।
1: बिल्कुल।
0: तो इंग्लैंड ने एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। इस श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा।
1: एंड इन फुटबॉल द इंडिया अंडर 17 वुमेन्स टीम हैव बीन ड्रॉन विद मलेशिया, सीरिया एंड इराक इन ग्रुप ई ऑफ द AFC अंडर 17 वुमेन्स एशियन कप China 2027 qualifiers, following the draw conducted at the AFC house in Kuala Lumpur, Malaysia yesterday. India will aim to qualify for back-to-back AFC Under-17 Women's Asian Cups for the first time, following the Young Tigresses' historic first-ever knockout stage appearance in the previous edition. Malaysia will host Group E of the qualifiers from 5th to 11th of October this year. India will begin their campaign against Iraq, followed by a match against Syria and then Malaysia. The group winners will qualify for the AFC Under-17 Women's Asia Cup China 2027, which will be held in Suzhou from 31st of March to 17th of April 2027.
0: और अब राष्ट्रीय खेल हॉकी की बात, तो हॉकी इंडिया देश भर में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए कल से राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग और आर्टिफिशियल एजुकेशन पाथवे कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञ और प्रशिक्षक भाग लेंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात महानगरों की खबरों का। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के समाचारों की।
1: जी,
0: तो दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप और इसके लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि निवेश की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति दिल्ली के 11 विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों, ITI और सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए है। दिल्ली सरकार के स्कूलों के विद्यार्थी इन संस्थानों में इस नीति का लाभ उठा सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि सफल छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य इंक्यूबेशन नीति निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। दिल्ली कैबिनेट द्वारा अनुमोदित इस नीति के अंतर्गत सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का भी आयोजन करेगी। और दिल्ली सरकार आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहल के 7वें चरण के अंतर्गत 45 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण करेगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इन केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को उनके

0: अपने घरों के नज़दीक आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा दिल्ली में लोक निर्माण विभाग नो योर रोड परियोजना इस पहल के अंतर्गत राजधानी की सभी सड़कों में लगभग 2500 क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। इन क्यूआर कोड को स्कैन करके नागरिक सड़क के निर्माण मरम्मत काम करने वाली एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही नागरिक क्यूआर कोड के जरिए सड़क से जुड़ी शिकायतों पर भी अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। उधर जामिया मिल्लिया इस्लामिया जेएमआई ने डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी के रीडिंग हॉल का विस्तार और नवीनीकरण का कार्य भी किया है। नवीनीकृत और विस्तारित रीडिंग हॉल में शोधार्थियों और पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से 250 सीटों वाला एक रीडिंग हॉल और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 150 सीटों वाला एक रीडिंग हॉल शामिल है।
1: And in Chennai Metro News, the Directorate of Medical Education has found merit in complaints that some medical colleges collected tuition fees for the compulsory internship year of the MBBS course. Health Minister K.G. Arun Raj ordered the inquiry after reviewing reports submitted by teams comprising senior doctors and deans from Kanchipuram, Chengalpattu and Madurai. The complaints relate to colleges charging fees for the entire 5.5-year MBBS duration instead of the 4.5-year academic program in the final year. Staying on with Chennai Metro News, the Enforcement Directorate has detected illegal forex transactions to the tune of 50 crore rupees by two city-based hair export firms. ED said it seized various incriminating documents and digital records indicating receipt of export proceeds in foreign currency, utilization of Dubai-based overseas entities for business transactions with foreign customers, communications related to hawala transactions, and records pertaining to collections in foreign currency equivalent to over 50 crore rupees.
0: और अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की सरकारी खरीद नीति में व्यापक सुधार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य निविदा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, समन्वय, गुणवत्ता, नवाचार और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। समिति मौजूदा निविदा नियमों की समीक्षा करेगी और सुधारों की सिफारिश करेगी, जिसके बाद सरकार संशोधित दिशा निर्देश भी जारी करेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक नई एग्रीगेटर नीति लागू की है। इससे यात्री परिवहन अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बनेगा। इस नीति के अंतर्गत एग्रीगेटर कंपनियों को राज्य परिवहन प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। 24 घंटे शिकायत समाधान, जीपीएस ट्रैकिंग, ड्राइवर सत्यापन और बीमा कवरेज सुनिश्चित करना होगा, जबकि ड्राइवरों को कुल किराए का कम से कम 80% हिस्सा मिलेगा। ये नीति सर्ज प्राइजिंग पर सीमा भी लगाती है। एप्स पर मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का समर्थन अनिवार्य करती है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देती है। कार पूलिंग के लिए एक कानूनी ढांचा भी प्रदान करती है और मराठी भाषा का ज्ञान रखने वाले स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देती है।
1: And now moving on to Bengaluru, Prime Minister Narendra Modi will virtually inaugurate 4 redeveloped railway stations in Karnataka under the Amrit Bharat Station Scheme tomorrow. The stations are Alnavar, Badami, Bantawal and Koppal, which have been redeveloped at a total cost of nearly 80 crore rupees. Staying on with Bengaluru, Deputy Chief Minister and Revenue Minister Dr. G. Parameshwara has said that the Karnataka government is taking all necessary measures to tackle the worsening drought situation and prevent drinking water shortages across the state. He said the government has released 5 crore rupees to each district for drinking water supply and is closely monitoring the situation. Dr. Parameshwara said he has written to the Prime Minister, Union Home Minister and Union Agriculture Minister seeking relaxation of drought declaration norms and the immediate release of NDRF funds for drought relief.
0: और अगर बात करें पश्चिम बंगाल से जुड़े समाचारों की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना ABSS के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लगभग 1570 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इन स्टेशनों को आधुनिक यात्री अनुकूल परिवहन केंद्रों में परिवर्तित किया गया है। साथ ही इनकी क्षेत्रीय पहचान को भी बरकरार रखा गया है। पूर्वी रेलवे के अंतर्गत इस परियोजना के लिए 64 स्टेशन

0: स्टेशनों की पहचान की गई है, जिनमें से 6 का उद्घाटन प्रधानमंत्री पहले ही कर चुके हैं। शुक्रवार को पूर्वी रेलवे के मालदा डिवीजन के अंतर्गत आने वाले शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, जो इस जोन के तहत उद्घाटन किया जाने वाला 7वां पुनर्विकसित ABSS स्टेशन होगा। शिवनारायणपुर स्टेशन का पुनर्विकास योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 17,94,00,000 रुपये की लागत से पूरा किया गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे NFR जोन के अंतर्गत आने वाले 2 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों में अलीपुरद्वार संभाग के अंतर्गत जलपाईगुड़ी रोड शामिल है।
1: मूविंग ऑन टू हैदराबाद, IT एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर दुड्डिल श्रीधर बाबू एंड TPCC प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड अनाउंस्ड दैट तेलंगाना इज फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजिक प्लान्स टू मैक्सिमाइज बेनिफिट्स फ्रॉम द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सीटा बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम। Following the agreement's implementation, a high-level UK delegation led by South Asia Deputy Trade Commissioner Chandru K. Iyer met with leaders at the Secretariat yesterday. Both leaders expressed optimism that the deal would significantly boost bilateral trade, opening up potential opportunities worth 32.56 lakh crore rupees. Highlighting Telangana's investor-friendly environment, they invited UK industrialists to leverage the state's world-class infrastructure in key sectors, including life sciences, aviation, defence, IT, semiconductors, chip design and electronics. And moving on to Goa. In Goa, Chief Minister Dr. Pramod Sawant participated in the Jagannath Yatra and called upon people from Odisha living in the state to embrace Goa's culture and contribute to its development. More in this report.
2: Chief Minister Dr. Pramod Sawant performed the ceremonial pulling of the chariot during the annual Jagannath Rath Yatra in Panji. The procession began from Miramar Circle and culminated at the Panji ferry boat jetty. Addressing the gathering, Dr. Sawant said Goa is a state that upholds communal harmony and respects all religions. He appealed to people from Odisha residing in Goa to adopt Goan culture while continuing to contribute to the state's progress. The Chief Minister noted that nearly 40,000 people from Odisha are working in Goa and expressed hope that the blessings of Lord Jagannath would bring continued peace and prosperity to the state. The Jagannath Rath Yatra has been organized annually in Goa by Odisha community since 2009. For Aaj Savere, Mahesh Sopade, Akashwani News, Panji.
1: In Keralam, the observance of Ramayana month begins today. More from our correspondent.
3: In Keralam, the Karkadaka month of Malayalam era is observed as Ramayana month, a time when devotees turn to the epic Ramayana for spiritual strength and peace of mind. Today marks the first day of Karkadakam. From the very first day of the Karkadakam month, the recitation of Ramayana becomes a daily ritual in many households and temples across Kerala. Special recitation sessions and devotional programs are also organized in temples during this period. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी गोल्ड पर मुकेश और प्रमोद के साथ। कार्यक्रम में अब बात महानगरों के मौसम की शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अगर बात करें मुंबई में तो आज वहां भी सामान्यतः बादल छाए रहने की संभावना है। शहर में आज का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अगर बात करें कोलकाता की तो आज वहां भी बादल छाए रहने और बारिश का अनुमान है। आज का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री के सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं प्रमोद से।
1: जी मुकेश, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 28 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी 40 डिग्रीज। Bengaluru is expected to have generally cloudy sky. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and the maximum will be around 31 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will be between minimum of 25 degrees and a maximum of 35 degrees Celsius.
0: श्रोताओं, अब वक्त आ गया है अतीत के उस पार उन प्रमुख घटनाओं को याद करने का जिन्होंने आज के दिन अपनी एक विशेष पहचान दर्ज की। आज 17 जुलाई 2026

0: है। 17 जुलाई का दिन कहने को तो एक सामान्य सा ही दिन है, लेकिन इतिहास के झरोके में झांके तो इस तारीख के नाम बहुत सी अच्छी और आंखों को नम कर देने वाली घटनाएं दर्ज हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले बात बरस 1919 की, फिनलैंड में आज ही की तारीख को इस साल में संविधान को अंगीकार किया गया था, और 1924 में ऑस्ट्रेलिया में संघीय चुनाव में मतदान भी अनिवार्य आज ही की तारीख को हुआ था। अगर बात करें 1929 की, तो सोवियत संघ ने चीन के साथ कूटनीतिक संबंध को समाप्त कर लिया था, और 1994 में धूमकेतु शुमेकर लेवी 9 का पहला टुकड़ा बृहस्पति ग्रह से टकराया। इसके बाद 1995 में फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी घोषित किए गए थे।
1: मुकेश, टुडे वी आर आल्सो सेलिब्रेटिंग द वर्ल्ड इमोजी डे, अ डे टू ट्रिब्यूट टू द टाइनी डिजिटल सिंबल्स दैट हैव ट्रांसफॉर्म्ड द वे वी कम्युनिकेट।
0: बिल्कुल,
1: I'm sure आप भी यूज करते होंगे
0: इमोजीज। बिल्कुल, इमोजीज का तो बिल्कुल अपने डेली लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है, हम
1: जी,
0: अपने
1: जी,
0: मन की भावना।
1: बट मुझे सिर्फ कुछ इमोजीज के बारे में पता है, बाकी बहुत सारे हैं। आई डोंट नो अबाउट,
0: मुझे भी बस कुछ ही के, जिनमें कि एक मतलब भारतीय संस्कृति का परिचायक जिसे हम कह सकते हैं कि नमस्कार करते हुए अभिवादन,
1: नमस्कार भी दो तीन है उसमें,
0: हाथ जोड़ना।
1: एग्जैक्टली,
0: बिल्कुल।
1: द डेट जुलाई 17th वाज चोजन बिकॉज इट अपीयर्स ऑन द कैलेंडर इमोजी ऑन मोस्ट प्लेटफॉर्म्स। Originally linked to Apple's iCal launch in 2002, it has since become the unofficial birthday of the emoji and a global moment to recognize their cultural impact.
0: Ji.
1: And listeners, today the world comes together to celebrate World Day for International Justice, a powerful reminder of our shared commitment to justice, accountability and human dignity. Marking the anniversary of the Rome Statute that founded the International Criminal Court, this day highlights how justice underpins peace and human rights globally.
0: Gee.
1: Across the country, awareness campaigns and student dialogues fuel a shared vision. Justice is not just a promise, but a living reality. ये भी बहुत सही है मुकेश।
0: बिल्कुल सही
1: कि अगर किसी के साथ injustice हो रहा हो और अगर हम उस चीज को अगर नजरअंदाज कर दें, that means
0: तो
1: हम गलत कर रहे
0: हैं। न्याय के समान ही अगर उसको देखा जाए तो देखा जाएगा।
1: जी।
0: तो कार्यक्रम में अब बात क्यों ना की जाए उन व्यक्तित्वों की जो आज के दिन इस दुनिया में आए, आज के दिन या जिन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, या आज ही जिनका जन्मदिन है। तो इस कड़ी में बात करते हैं सबसे पहले कानन देवी की। भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री, गायिका और फिल्म निर्माता कानन देवी की आज पुण्यतिथि है। कानन देवी एक प्रशिक्षित गायिका तो नहीं थी, लेकिन सिनेमा जगत में जिस दौर में वो सक्रिय थीं, उन्होंने अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर अपना स्थान बनाया। वो पहली बांग्ला कलाकार थीं जिन्होंने भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए उनको 1976 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: That's right.
0: कानन देवी ने 10 वर्ष की उम्र में फिल्म जयदेव में काम किया। 1934 में प्रदर्शित फिल्म माँ बतौर अभिनेत्री कानन देवी के सिने करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई। उनकी अन्य मुख्य फिल्में हैं मुक्ति, जवाब, हॉस्पिटल, वन फूल, फैसला, आशा और राजलक्ष्मी। तो आइए सुनते हैं 1943 में आई उनकी हिट फिल्म हॉस्पिटल से कानन देवी पर फिल्माया गया।

0: मुकेश, मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था दूरदर्शन में कानन देवी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका जो बहुत बड़ा रिग्रेट है लाइफ में वो ये था कि शी रिफ्यूज पी सी बरुआ एज देवदास. देवदास में उनको एक रोल दिया गया था
1: जी,
0: बट शी रिफ्यूज इट. सो दैट वॉज वन ऑफ अर बिगेस्ट रिग्रेट्स.
1: बिल्कुल.
0: वी हैव अ सॉन्ग फ्रॉम द मूवी जवाब, वो सुन लेते हैं उनकी आवाज़.
1: बिल्कुल, क्यों नहीं.

श्रोताओं, भारतीय संगीत जगत के मनीषी लालमणि मिश्र की भी आज हम उनको याद कर रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। लाल मिश्र ने विचित्र वीणा की वादन तकनीक विकसित करने के साथ भारतीय संगीत वाद्यों के इतिहास तथा विकास क्रम पर अनुसंधान किया। वैदिक संगीत पर शोध करते हुए उन्होंने

0: सामिक स्वर व्यवस्था का रहस्य सुलझाया। सामवेद के इन प्राप्त स्वरों को संरक्षित करने के लिए उन्होंने राग सामेश्वरी का भी निर्माण किया। भरत मुनि द्वारा विधान की गई 22 श्रुतियों को मानव इतिहास में पहली बार डॉक्टर मिश्र द्वारा निर्मित वाद्य यंत्र श्रुति वीणा पर एक साथ सुनना संभव हुआ। संगीत की हर विधा में पारंगत लालमणि मिश्र ने अपनी साधना और शोध के बल पर एक अलग शैली विकसित की, जिसे मिश्र वाणी के नाम से स्वीकार किया गया था।
1: टुडे इज ऑल्सो द डेथ एनिवर्सरी ऑफ मैसूर पुट्टलिंगप्पा शंकर, popularly known as M.P. Shankar. He was an Indian actor and filmmaker in Kannada cinema. He acted in films like Satya Harishchandra as Veerabahu, Nagarhavu as Pailwan Basanna, and Bhutiyana Magana as Bhutaya. He produced and starred in a lot of films, Dr. Rajkumar, which acted as a forest department driver, Johnny. He died on 17 July 2008 in Mysore. And we have a song from his film, Anantaru.

आइए नमन करते हैं परमवीर चक्र विजेता जवान निर्मलजीत सिंह सेखों को। आज उनकी पुण्यतिथि है। ये सम्मान उन्हें 1971 में मरणोपरांत मिला।

0: भारतीय वायुसेना से परमवीर चक्र के एकमात्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए उस युद्ध में वीरगति पाई जिसमें भारत विजयी हुआ और पाकिस्तान से टूटकर उसका पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र देश बना। युद्ध के दौरान निर्मलजीत सिंह श्रीनगर वायुसेना के अड्डे पर तैनात थे। नेट हवाई जहाजों पर उनके करिश्मे के लिए निर्मलजीत उत्साह उस्ताद माने जाते थे। तो नमन है माँ भारती के ऐसे सपूत को।
1: मुकेश, टुडे इज द बर्थडे ऑफ ज़रीना वहाब, इनके बारे में जरूर सुना होगा आपने।
0: बिल्कुल,
1: एन इंडियन एक्ट्रेस हु प्रेडोमिनेंटली वर्क्ड इन हिंदी एंड मलयालम फिल्म्स, नोन फॉर क्रिटिकली एक्लेम्ड रोल्स इन चिच्चोर एंड गोपाल कृष्णा इन हिंदी सिनेमा एंड मलयालम फिल्म्स लाइक मदनोत्सवम, चमरम, पालंगल एंड आडामिंडे मगन आबू। Wahab was born in Visakhapatnam. She is fluent in her mother tongue, Telugu, in addition to Urdu, Hindi and English. And बहुत amazing बात है Mukesh, which I want to share with you and the listeners, that she met Raj Kapoor. Raj Kapoor said that you have a very ugly face. आप इतने बदसूरत हो कि आप कभी फिल्मों में act करने की कोशिश भी मत करना. But in spite of that, she worked on her looks and she became a very good actress.
0: इसी से हमने कार्यक्रम की शुरुआत भी की थी, इंसान को सफलता के मार्ग पर चलने के लिए निरंतर परिश्रम करना चाहिए।
1: बिल्कुल, and she was nominated for a Filmfare Award in the Best Actress category for Gharonda. And she's acted in many Malayalam films also. She was a very popular Malayalam actress. And I want you to listen to a song from the Malayalam film Madanolsavam.
0: जी।

0: और श्रोताओं, आज शाम 6:30 बजे आप इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में महाराष्ट्र की लय लावणी और जोगवा कार्यक्रम में पारंपरिक लोक नृत्य और लोक संगीत का लुत्फ ले सकते हैं। इसके अलावा नई दिल्ली में ही इंडिया हैबिटेट सेंटर में शाम 7 बजे से भरतनाट्यम की प्रस्तुति भी दी जाएगी और शाम 7 बजे से ही इंडिया हैबिटेट सेंटर के गुलमोहर सभागार में द मेंटल गेम, खेलों में उच्च प्रदर्शन का मनोविज्ञान विषय पर परिचर्चा भी आयोजित की जाएगी। तो ये हैं आज के कुछ मुख्य कार्यक्रम जिनमें आज आप शाम आज जाकर इनमें भाग ले सकते हैं। तो अब समय हो चला है अपने श्रोताओं से आज्ञा लेने का। तो चलते चलते आज का सुविचार की अपना व्यवहार हमेशा शून्य सा रखिए ताकि आप में से कोई कुछ घटा ना सके। इसी विचार के साथ मुकेश और प्रमोद को दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की।
1: That's right. Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in. Have a superb day.

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
2: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब और श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम, तलवाड़ा, मुकेरियां नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अंबाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
4: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ATS ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ATS के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक ATS की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल BSF से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कन्नडम महीने को रमाण मास

0: रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रामायण का पाठ करते हैं। आज से करगिलगम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रामायण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को AFC अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट UG 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है नीट UG का परिणाम जारी, सफल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के शब्द हैं पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल अव्वल, 19 बच्चों को 700 से अधिक अंक। अमेरिका और ईरान के बीच ताज़ा सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया। जनसत्ता ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है होर्मुज पर जहाज़ों में भारतीय नागरिकों की तैनाती पर रोक, नौवहन प्रशासन महानिदेशालय का निर्देश। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, 1 श्रद्धालु की मौत, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र लिखता है खराब मौसम और बारिश के बाद उमड़ी 10 लाख की भीड़। राजधानी में 16 साल के बाद सबसे लंबा मानसून ब्रेक। दिल्ली में अगले 4-5 दिन और अच्छी बारिश होने की उम्मीद बेहद कम, हिंदुस्तान की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने अनुमान शीर्षक से खबर दी है दो नए सिस्टम से रफ्तार पकड़ेगा मानसून, 20 से उत्तर और मध्य भारत में तेज बारिश, 40 से अधिक देशों के साथ साझा समुद्री अभ्यास, 20 जुलाई से होगा, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है कोच्चि स्थित सदर्न नेवल कमांड में होगी ऑपरेशन की शुरुआत। लोकसत्य ने साइबर अपराध पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, शीर्षक दिया है डिजिटल भारत पर साइबर अपराध का साया। पत्र लिखता है साइबर अपराध की सबसे चिंताजनक बात है कि इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती, दुनिया के कई देशों में बैठे अपराधी भारत के नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे में सभी को सावधान रहना जरूरी है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट UG पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश ठेर।
1: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகேஷ் குமார் பல். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर दो या तीन कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की

0: के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
1: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,770 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। श्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते ATS ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ATS के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जैश ए मोहम्मद के 8 सदस्यों को इस महीने गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार ये आरोपी गुजरात में आतंकी नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट NEET.NTA.NIC पर उपलब्ध हैं। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। उत्तर प्रदेश में आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी है। इस नीति के अंतर्गत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा में विभिन्न स्थानों पर तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी आज मूसलाधार वर्षा की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ स्थानों पर ऐसा ही मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab today. During his visit to Haryana, the Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at the Jind railway station. The Prime Minister will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium at Jind and address the gathering on the occasion. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. From Jind, the Prime Minister will travel to Chandigarh, where at around 1

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। वे हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर दो या तीन कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जिंद।
0: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब और श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम, तलवाड़ा, मुकेरियां नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अंबाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और फिनलैंड के संबंध एक नए और महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के नेता द्विपक्षीय संबंधों को डिजिटलीकरण और सतत विकास के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक रिपोर्ट।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फिनलैंड के आर्थिक मामलों के मंत्री सकारी पुइस्टो के साथ भारत फिनलैंड बिजनेस राउंड टेबल को संबोधित करते हुए व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने से दोनों देशों के कारोबार और निवेश के लिए नए अवसर खुलेंगे। श्री गोयल ने कहा कि भारत की विशाल प्रतिभा, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और मजबूत विनिर्माण क्षमता फिनलैंड की तकनीकी विशेषज्ञता और विश्व स्तरीय नवाचार प्रणाली की पूरक है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग की मजबूत नींव तैयार होती है। श्री गोयल ने दोनों देशों के उद्योग जगत से उन्नत विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये सहयोग दोनों देशों के उद्योगों और नागरिकों के लिए साझा समृद्धि तथा सतत विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। विश्व दर्पण के लिए मैं मुकेश कुमार बल।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने देश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए नए वीजा प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जो विदेशी ऐसे आतंकवादियों को आर्थिक सहायता देते हैं, वो अमरीकी सभ्यता के विरोधी हैं और वो अमरीका में प्रवेश नहीं कर सकते। अमरीकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों से लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका ने कल रात ईरान पर फिर से हमले किए। दोनों देशों के बीच शांति समझौता टूटने के बाद ईरान पर अमेरिका का ये लगातार छठा हमला है। अमेरिकी केंद्रीय कमान के अनुसार इस हमले का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है, क्योंकि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले अमरीकी वाणिज्यिक जहाजों के लिए संकट पैदा करता है। उधर ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि ईरान पर अमरीकी

0: में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने के बाद 3 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। ईरान के हुरमुज़गान प्रांत में कई स्थानों पर हमले हुए और कोहरिस्तान गांव के पास 2 पुलों और बंदर खमीर काउंटर में शोर नदी को भी निशाना बनाया गया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरुद्ध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए। एक रिपोर्ट।
1: ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की स्थिति पर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने तख्तियां लेकर पाकिस्तान के विरुद्ध नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि किस्तानी सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। उनका कहना है कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी तथा आम नागरिकों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की यात्रा और पर्यटन के बहिष्कार की भी अपील की है। उन्होंने लोगों से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की सेवाओं का उपयोग नहीं करने तथा उनकी मांगे पूरी होने तक पाकिस्तान भेजे जाने वाले धन पर रोक लगाने का भी आह्वान किया है। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: अल्जीरिया की राजधानी के पास एक अनाथालय में लगी आग में 11 बच्चों की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हो गए। अल्जीरिया की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि राजधानी अल्जीयर्स के पूर्वी उपनगर मोहम्मदिया में स्थित 2 मंजिला शिशु देखभाल संस्थान में कल आग लग गई। यूक्रेन की संसद ने एक बड़ी सरकारी फेरबदल में सरही कुर्स्की को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कुर्स्की को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया। कुर्स्की मई 2025 से यूक्रेन की राष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी नाफ्टोगास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। ऊर्जा क्षेत्र में उनके अनुभव को देखते हुए कुर्स्की को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस है। इसका उद्देश्य न्याय का समर्थन करना, पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देना और विश्व की शांति, सुरक्षा तथा कल्याण को संकट में डालने वाले अपराधों को रोकने में इच्छुक लोगों को एकजुट करना है। ये दिन 17 जुलाई 1998 को रोम संधि को अपनाने की वर्षगांठ का प्रतीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप का फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम उपस्थित रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क के ट्रंप टावर में फीफा के स्वागत समारोह में भी भाग लेंगे। भारत की महिला फुटबॉल टीम को AFC अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। पिछली बार भारतीय टीम ने पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में जगह बनाई थी। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। वहीं 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत फिनलैंड के रिश्ते एक महत्वपूर्ण दौर में। दोनों देश डिजिटलीकरण और टिकाऊपन के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा दे रहे हैं। अमेरिका ने शांति समझौता टूटने के बाद ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। अमेरिका ने देश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए नए वीजा प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

0: சுகமான ராகங்கள் நிறைவு பெற்றது. இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கனகலதா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे. प्रधानमंत्री कुछ ही देर में हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
2: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं. जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर दो या तीन कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है. इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है. 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है. यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है. आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद.
1: प्रधानमंत्री जींद के एकलव स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज भारत को अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिलने का सपना साकार होने जा रहा है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि नवाचार, हरित परिवहन और आत्मनिर्भर

0: भारत के दृष्टिकोण के प्रति भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का बीएसएफ कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वे कोलकाता के लिए रवाना होंगे। गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके क्रियान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। इस नीति के अंतर्गत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्ष में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। संसद का मॉनसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है। इससे पहले भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज सुबह के कारोबार में 1% की बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 695 अंक बढ़कर 77,882 जबकि निफ्टी 178 अंक की बढ़त के साथ 24,251 पर पहुंच गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध अप्रवासी ट्रक चालकों पर व्यापक कार्रवाई की योजना की घोषणा की है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य अमेरिका की सड़कों पर अवैध रूप से काम कर रहे लोगों को हटाकर उनकी जगह नए वाणिज्यिक लाइसेंसिंग कार्यक्रम के माध्यम से सैन्य क्षेत्र के लोगों को लाना है। ये घोषणा पेंसिल्वेनिया रक्षा तथा नवाचार शिखर सम्मेलन के दौरान की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind railway station in a short while from now. The Prime Minister will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium at Jind and address the gathering on the occasion. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. From Jind, the Prime Minister will travel to Chandigarh, where at around 1:45 p.m. he will lay the foundation stone and inaugurate various development projects worth over 4,700 crore rupees. He will also address the gathering on the occasion. Subsequently, the Prime Minister will visit Jalandhar in Punjab, where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth over 5,470 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi held a conversation with the Amir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and conveyed his condolences on the passing of the father Amir, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. In a social media post, Mr. Modi said that the father Amir of Qatar's enduring legacy will continue to guide the two countries as they further strengthen their strategic partnership. He also recalled Father Amir's deep affection for India, his warmth towards the Indian community in Qatar, and his steadfast commitment to India-Qatar relations.

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt to rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

0: मुक्त भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: திரைக்கனத்தின் நிறைவான பாடல் கொஞ்சம் சலங்கை படத்திலிருந்து எஸ் ஜானகி பாடியது. பாடல் ஒலிக்கும் நேரம் 12:24:30.

0: மனிதர்களுக்கு உண்ண, உடுக்க, உறங்க கொடையாகின்றன. விலங்குகளுக்கு வாழ்விடமாகின்றன. பல்லுயிர் பெருக உதவுகின்றன. பருவநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொண்டு காக்கின்றன. கரியமிலம் கொண்டு பிராணவாயு தருகின்றன. இத்தனை தரும் மரங்கள் நம்மிடம் வேண்டுவது சிறிது அக்கறை மட்டுமே. மரங்கள் வளர்ப்போம், மழை பெறுவோம், சூழல் வளம் காப்போம். அக்கறையுடன் சொல்வது உங்கள் ஆகாஷ்வாணி சென்னை.
1: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கனகலதா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया. इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरी तरह से स्वदेश में बनाई गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया. इस अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया.
3: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है. आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है. अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है. हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे.
2: जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है. प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे. इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं. इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा. गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे. श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. श्री शाह का बीएसएफ कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है. गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे. इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन

0: तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये दौरा भारत के इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 790 अंक बढ़कर 77,977 जबकि निफ्टी 205 अंक की बढ़त के साथ 24,277 पर कारोबार कर रहा था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today flagged off India's first hydrogen-powered train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station in Haryana. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. On the occasion, the Prime Minister also dedicated to the nation as well as laid the foundation stone of national highway projects worth over 12,470 crore rupees in Haryana. Mr. Modi dedicated the 157-kilometer-long Delhi-Amritsar-Katra Expressway. The Greenfield Corridor forms part of the 667-kilometer Delhi-Amritsar-Katra Expressway. The expressway will reduce travel time between Delhi and Katra from nearly 14 hours to about 6 hours, while cutting the Delhi-Amritsar journey from about 8 hours to 4 hours. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said, over the past 12 years, Indian Railway has witnessed major transformation. He noted that Haryana has witnessed a new phase of development in recent years and has moved forward on the path of progress. Mr. Modi added that the launch of the country's first hydrogen train has given Jind the special place in India's history.
2: Aaj Bharatiya Rail ne bhi 21vi sadi ki is technology mein ek bada step liya hai. आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: Speaking on the occasion, Union Railways Minister Ashwini Vaishnav termed the launch of India's first hydrogen-powered train as a historic achievement in the country's technological advancement. He noted that this milestone is the result of a strong national resolve to develop indigenous hydrogen technology. Mr. Vaishnav emphasized that the train is completely environment-friendly with no requirement for diesel or petrol.
3: इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इस टेक्नोलॉजी को अब और दूसरे सेक्टर्स में भी यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ट्रक इन कार्स, इन स्मॉल फिशिंग बोट्स, इट कैन बी यूज्ड इन लार्ज माइनिंग ट्रक्स, माइनिंग इक्विपमेंट, इट कैन बी यूज्ड इन डिफेंस आल्सो। सो नाउ वी कैन बेसिकली यूज़ दिस टेक्नोलॉजी इन मल्टीपल सेक्टर्स विदाउट डिपेंडिंग अपॉन एनीबडी।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी विल विजिट जालंधर इन पंजाब दिस आफ्टरनून, वेयर ही विल इनॉग्रेट

0: ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को, भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: The Prime Minister highlighted that today Jind is emerging as a symbol of the good governance model of the BJP and the NDA. He noted that Haryana has witnessed a new phase of development in recent years and has moved forward on the path of progress.
0: Aaj Jind BJP NDA ke sushasan model ki tasveer ban raha hai. Bite varshon mein pura Haryana hi विकास की नई पटरी पर चल पड़ा है। आज का ये कार्यक्रम डबल इंजन की बीजेपी सरकार के इसी मिशन को नई ऊर्जा से भर रहा है।
1: Speaking on the occasion, Union Railways Minister Ashwini Vaishnav termed the launch of

0: In badminton, two-time Olympic medalist PV Sindhu has advanced to the semi-finals of the Japan Open 2026. Sindhu progressed after Japan's former world champion Nozomi Okuhara withdrew from their women's singles quarterfinal, giving the Indian shuttler a walkover. World number 10 Sindhu will now face China's world number 4 Chen Yufei in the semi-finals tomorrow. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi flags off India's first hydrogen train in Jind, Haryana, also lays foundation stone and dedicates various development projects worth over 14,000 crore rupees. DGMA directs ship owners to avoid deploying Indian seafarers undertaking voyages through Strait of Hormuz. European Union expresses serious concern over human rights situation in Pakistan, asks Islamabad to comply with international commitments to access trade benefits. IMD forecasts heavy rainfall over parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Odisha today. And in badminton, Indian ace shuttler PV Sindhu enters semi-finals of Japan Open in Tokyo. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 667 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा जबकि दिल्ली अमृतसर की यात्रा का समय लगभग 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है
2: दो नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी साथ ही इस यहाँ के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है
2: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया श्री वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि

0: नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दृढ़ राष्ट्र संकल्प का परिणाम है।
1: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
0: भारत में डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। जींद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ ये ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
2: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जींद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
0: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहिम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहिम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरु मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।
3: यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। महानिदेशालय का कहना है कि इन घटनाओं से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए जोखिम काफी बढ़ गया है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाज के सीमा चौक स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: केंद्रीय गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों का अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक विषय, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन तथा जन्म मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वह कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। रविवार श्री शाह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा वह कलकत्ता में राष्ट्रीय

0: पुस्तकालय में नवनिर्मित वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में वह अमूल बंगाल डायरी का आधारशिला रखेंगे। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया गया है। 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सैंडू से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात कर व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 21 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जहां वे राष्ट्रपति गोर्डोना सिल्जनवोस्का दावकोवा, क्रिस्टिजन मिकोस्की और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद और भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 23 जुलाई से 2 दिवसीय रोमानिया यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति निकोसोर डैंस सहित वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। संघ ने कहा है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस के अंतर्गत पाकिस्तान को व्यापार लाभ 2027 से संशोधित GSP ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-2025 अवधि की नवीनतम संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाकिस्तान की संघीय सरकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। दोनों पक्षों के समर्थन से पारित ये प्रस्ताव कल सत्र के दौरान सांसद जलाल अली शाह ने पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनाव सुरक्षा से संबंधित खुफिया रिकॉर्ड को तत्काल सार्वजनिक करने की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 771 अंक बढ़कर 77,957 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,268 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफेई से होगा।

ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच गई। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ ग्रैंड रोड पर अपनी औपचारिक यात्रा पूरी करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी आप सुन रहे थे दोपहर।
2: आकाशवाणी சென்னை வானொலி 100.1 எஃப்எம் கோல்ட் அலைவரிசை நேரம் 2:30.
3: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது 100.1 மெகாஹெர்ட்ஸ் ஆகாஷ்வாணி சென்னை எஃப்எம் கோல்ட்.
2: நேர்களை இனி கேட்கலாம் திரைகானம். நிகழ்ச்சியின் துவக்கமாக கீதாஞ்சலி படத்திற்காக இளையராஜா சித்ரா பாடிய பாடல்.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: படத்து கேட்கலாம், தூரல் நின்னு போச்சு படத்திற்காக மலேசியா வாசுதேவன் எஸ் ஜானகி பாடிய பாடல்.
4: சங்கச்சங்கிலே நின்னும் பைங்கிலே தானே கொஞ்சியதோ, இனி தஞ்சம் மல்லிகை மஞ்சம்

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: கட்டினா சுயம் ஹி கட்டுப்படு. பாரதிய சேனா.
1: தேனி நேரம் நிறைவு பெற்றது. இன்னும் சில நொடிகளில் நிகழ்ச்சிகள் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாக கேட்கலாம்.
2: Join the mega plantation drive. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधा

0: Manager, CS. Candidates with required educational qualifications, professional experience and eligibility criteria may apply as per the detailed advertisement. The complete information regarding qualifications, experience, pay scale, category-wise vacancies and online application procedure is available on the official BCPL website. Kindly look up www.bcplonline.co.in. I repeat the website, it is www.bcplonline.co.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के 60 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इनमें से 24 पद अनारक्षित हैं, 9 पद अनुसूचित जाति के लिए, 5 अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 16, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 6 पद आरक्षित हैं। विस्तृत विज्ञापन और आवेदन पत्र के लिए संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध यूआरएल लिंक पर आप जा सकते हैं। ये लिंक है fr.iitism.ac.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 30 सितंबर 2026। भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग इन प्रशासनिक पदों के लिए भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। उप महाप्रबंधक ज्ञान सेवाएं 1 पद, उप महाप्रबंधक पूर्व छात्र संबंध 1 पद, वरिष्ठ प्रबंधक लेखा परीक्षा 1 पद, प्रबंधक अकादमिक 1 पद, प्रबंधक प्रत्यायन 1 पद, सहायक प्रबंधक आईटी अवसंरचना 1 पद और सहायक प्रबंधक मैकेनिकल अवसंरचना 1 पद। अधिक जानकारी के लिए देखिए भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग की वेबसाइट www.iimshillong.ac.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 20 जुलाई 2026। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद सहायक प्रोफेसर ग्रेड 1 और 2 के लिए भी आवेदन आमंत्रित कर रहा है। कुल 30 पद हैं। विस्तृत विज्ञापन और आवेदन पत्र के लिए संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध यूआरएल लिंक fr.iitism.ac.in पर आप जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 31 अगस्त 2026। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। सहायक प्रोफेसर एथलेटिक्स 1 पद, सहायक प्रोफेसर निशानेबाजी 1 पद, सहायक प्रोफेसर भारोत्तोलन 1 पद, सहायक प्रोफेसर बैडमिंटन 1 पद, सहायक प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा 3 पद, सहायक प्रोफेसर खेल मनोविज्ञान 1 पद और सहायक प्रोफेसर खेल पोषण 1 पद। इसके अतिरिक्त गैर शिक्षण पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कनिष्ठ अभियंता सिविल 1 पद और जनसंपर्क अधिकारी 1 पद। विस्तृत अधिसूचना राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट है www.nsu.ac.in। आवेदन 9 अगस्त 2026 तक किया जा सकता है। केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला कोलकाता में प्रतिनियुक्ति आधार पर आशुलिपिक ग्रेड 1 के 2 पदों को भरा जाना है। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं 18 जुलाई से 24 जुलाई 2026 का रोजगार समाचार पत्र।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी

0: शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संग के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून करिश्मा। सो द गुड न्यूज ऑफ द डे इज दैट इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन पावर ट्रेन हैज बीन लॉन्च्ड एंड फ्लैग्ड ऑफ बाय आवर प्राइम मिनिस्टर टुडे, ब्रिंगिंग अ कंट्री ऑफिशियली इन द एलीट ग्लोबल लीग ऑफ हाइड्रोजन पावर्ड रेल ट्रांसपोर्ट by joining nations like Germany, France, China, Japan, and of course the US. And today, India marks another major milestone in this way in its transition to zero emission and green mobility. We have seen that India's path through Atmanirbharta has evolved from a crisis management response during the COVID-19 pandemic into a comprehensive long-term industrial and strategic policy, building a world-class infrastructure that represents our modern India. And this is what we bring to you in Parikrama, our country's developmental stories straight from the correspondents from different regions. We will discuss more on the new hydrogen powered train and many other stories in our afternoon magazine today. But right now, let's begin with the news headlines at this hour. We begin with Prime Minister Narendra Modi's flags off India's first hydrogen train in Jind, Haryana, also lays foundation stone and dedicates various development projects worth over 14,000 crore rupees.
0: समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए।
1: European Union expresses serious concern over human rights situation in Pakistan, asks Islamabad to comply with international commitments to access trade benefits.
0: Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya aur Odisha ke kuch hisson mein aaj tez barish ka anuman.
1: And in badminton, Indian ace shuttler PV Sindhu enters semi-finals of Japan Open in Tokyo. And Karishma, as always, it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about World Day for International Justice and also on India's first hydrogen-powered train. Karishma, have you ever thought of what happens when a crime is so grave that it shakes the conscience of the entire world? Our legal system works well for crimes committed within a country, but what if the crime itself crosses the borders?
0: बिल्कुल, जब नरसंहार, युद्ध अपराध या मानवता के खिलाफ अपराध ऐसे जख्म छोड़ते हैं जिन्हें पूरी दुनिया महसूस कर सकती है, तो न्याय को भी सीमाओं से ऊपर उठना पड़ता है। जब पूरे समुदाय पीड़ित हों और कोई एक ऐसा देश अकेले इससे न निपट सके, तो दोषियों को कौन जवाबदेह ठहराएगा, ये बड़ा सवाल है।
1: Well, the answer begins with World Day for International Justice, which is observed every year on the 17th of July. It's a day that reminds us of a simple but powerful idea that no one should be above the law, no matter how powerful they are.
0: अब जरा सोचिए कि अगर आपके पड़ोस में कोई साइकिल चोरी कर ले, तो किस तरीके से स्थानीय पुलिस और अदालतें उस मामले को देखेंगी?

तो इसके साथ ही सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है श्रोताओं, लेकिन क्या होगा अगर किसी देश का कोई नेता किसी टकराव के दौरान बड़े पैमाने पर हथियारों का आदेश दे दे, या धर्म या नस्ल के आधार पर पूरे समुदाय को निशाना बनाया जाए? क्या आम अदालतें हमेशा इतने बड़े पैमाने के अपराधों को संभाल सकती हैं? इसका जवाब कहीं ना कहीं यही है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है।

0: That is why the world understood that extraordinary crimes required an extraordinary system of justice. This year's theme is promoting justice, accountability and human rights worldwide. This reminds us that justice is not just only about punishing the guilty. It's also about standing with victims so as to protect their human dignity and also making sure that such tragedies are never ever repeated.
1: और इंटरनेशनल जस्टिस के लिए वर्ल्ड डे की कहानी कल शुरू नहीं हुई थी. असल में इसकी शुरुआत लगभग 3 दशक पहले 1998 में हुई थी, और वह भी किसी कोर्ट रूम में नहीं बल्कि इटली के रोम में एक कॉन्फ्रेंस टेबल पर. 120 देशों के प्रतिनिधि इस सोच के साथ एक साथ आए कि दुनिया के सबसे बुरे अपराधों के पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए. उनकी यह सोच 1998 में इसी दिन साकार हुई जब उन्होंने रोम स्टैचू को अपनाया, और यह संधि थी जिसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी की नींव रखी.
0: राइट, एंड अ फ्यू इयर्स लेटर ऑन 1st of July 2002, आफ्टर इनफ कंट्रीज हैड रेटिफाइड द ट्रीटी, द इंटरनेशनल Criminal Court or ICC officially began its work. And today the court is headquartered in The Hague in Netherlands. Unlike the International Court of Justice, which settles disputes between countries, the ICC prosecutes individuals accused of committing the world's most serious crimes.
1: और ये तब दखल देता है जब किसी देश का अपना न्याय तंत्र सही तरीके से मुकदमा चलाने में असमर्थ हो या ऐसा न करना चाहता हो. तो हम किसी तरह के अपराधों की बात कर रहे हैं. इसके भी 4 प्रमुख प्रकार हैं. पहला, नरसंहार. यह तब होता है जब किसी पूरे राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को खत्म करने के इरादे से लोगों को जान बूझकर निशाना बनाया जाता है.
0: एंड इफ वी मेंशन द सेकंड वन, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. दीज इंक्लूड वाइडस्प्रेड और सिस्टमैटिक अटैक्स अगेंस्ट सिविलियंस सच एज मास मर्डर, टॉर्चर और इवन फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट.
1: बिल्कुल. और श्रोताओं, इसके साथ ही अगर तीसरे मुख्य प्रकार की बात करें तो इसमें युद्ध अपराध भी शामिल है. इनमें युद्ध के नियमों का गंभीर उल्लंघन शामिल है, जैसे जानबूझकर आम नागरिकों पर हमला करना या फिर युद्ध के प्रतिबंधित तरीकों का इस्तेमाल करना.
0: एंड द फोर्थ वन वुड बी द क्राइम ऑफ एग्रेशन, व्हिच रिलेट्स टू द प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ अनलॉफुल मिलिट्री एग्रेशन बाय वन स्टेट अगेंस्ट अनदर.
1: तो अब एक बात सोचिए, जयपुर, कोची, शिलांग या गुवाहाटी में बैठा कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय न्याय के बारे में क्यों सोचे? क्योंकि न्याय का कोई पासपोर्ट नहीं होता. जब दुनिया में कहीं भी जवाबदेही तय होती है तो इससे हर जगह का एक मजबूत संदेश भी जाता है कि इंसानी जिंदगी की अहमियत है, और जो लोग सबसे गंभीर अपराध करते हैं वे अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते.
0: And Karishma, here I would say that this is where India gives us something to be truly proud of. India has always believed that justice is not merely a legal principle, it is a civilizational value. From the ancient ideal of dharma to our constitution's promise of justice, that is social, economic and political, in its very preamble, the idea of fairness has always been central to our national identity, isn't it?
1: बिल्कुल सही कहा आपने. और हमारी अदालतें, हमारे लोकतांत्रिक संस्थान और कानून के शासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता उस विरासत को और मजबूत कर रहे हैं. और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रणाली के सामने भी चुनौतियां हैं. राजनीतिक मतभेद, सीमित सहयोग और वैश्विक संघर्षों की जटिलता अक्सर जवाबदेही तय करना मुश्किल कर देती है. लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम न्याय के लिए कोशिश करना छोड़ दें?
0: Not at all. History has shown us that lasting peace cannot be built on silence or impunity. Justice may take time, but it remains one of humanity's strongest tools against violence and oppression.
1: और दुनिया भर में यह दिन कॉन्फ्रेंस, जागरूकता अभियानों, शैक्षिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक चर्चाओं के जरिए मनाया जाता है. इसका मकसद सीधा सा है, लोगों को यह याद दिलाना कि न्याय सिर्फ जजों और वकीलों की ओर से ही नहीं मिलता, बल्कि हर किसी की ये जिम्मेदारी होती है.
0: So the next time you hear the words international justice, don't just think of them only as a legal jargon or distant courtrooms, and well, justice may not erase the past, but it can shape the future.
1: और न्याय पीड़ितों से कहता है कि आपको भुलाया नहीं गया है, और दोषियों से कहता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है.
0: And justice also tells the world that human dignity must always be

0: protected.
1: और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस सिर्फ एक आयोजन नहीं है बल्कि जवाबदेही के जरिए शांति बनाए रखने की एक वैश्विक प्रतिबद्धता है.
0: एंड दैट्स व्हाई इट हैज बीन राइटली सेड इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर. एंड मूविंग ऑन इन द सेकेंड डेडलाइन वी हैव a discussion on India's first hydrogen powered train. What if I told you that a train could run without diesel, Karishma, without petrol, and leave behind nothing but water vapor? Sounds like something straight out of a science fiction movie, doesn't it? Well, not anymore, because today India has turned that imagination into reality. Prime Minister Narendra Modi today flagged off India's first hydrogen-powered train from Jind railway station in Haryana on the Jind-Sonipat route.
1: तो अब यहाँ पर श्रोताओं के लिए एक ये भी सवाल है कि ये काम कैसे करती है. तो चलिए ये भी बता देते हैं कि डीजल की बजाय यह ट्रेन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करती है. फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर बिजली बनाती है जिससे ट्रेन चलती है और वातावरण में सिर्फ पानी की भाप निकलती है.
0: साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग. एंड हियर इज समथिंग दैट मेक्स दिस अचीवमेंट इवन मोर रिमार्केबल. ओनली अ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग जर्मनी, Japan, China and the United States currently operate hydrogen powered trains. And with today's launch, India has proudly joined this exclusive club.
1: लेकिन भारत ने सिर्फ इस आइडिया की नकल नहीं की है, इसने कहीं न कहीं एक दो कदम उससे भी आगे निकल चुके हैं. दुनिया भर में ज्यादातर हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेनों में सिर्फ दो या तीन कोच होते हैं और इनका इस्तेमाल छोटी रीजनल सर्विस के लिए किया जाता है. वहीं दूसरी ओर भारत की हाइड्रोजन ट्रेन को 10 कोच वाली पैसेंजर ट्रेन के तौर पर डिजाइन किया गया है जिसमें लगभग 2600 यात्री सफर कर सकते हैं.
0: वेल दैट्स लाइक ट्रांसपोर्टिंग द एंटायर population of a small town in a single journey. And the train is not just bigger, it's stronger too. With a power capacity of 3200 horsepower, it is among the most powerful and longest hydrogen powered passenger trains in the world.
1: aur ye jind sonipat route par 75 km prati ghante ki raftaar se chalti hai aur iska design speed jo hai wo 110 km prati ghanta hai. ab hamare kuch sunne walon ke man mein ye bhi sawal aa sakta hai ki hydrogen to bahut tezi se aag pakadne wali gas hai, to kya ye waqai surakshit hai?
0: Well, a very valid question, Karishma, though, and its answer lies in the train's advanced safety systems. It is equipped with multiple layers of protection that continuously monitor for hydrogen leaks, heat, flames, and smoke.
1: और इस ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए जींद में एक खास हाइड्रोजन सुविधा भी बनाई गई है जिससे ट्रेन का सुरक्षित, भरोसेमंद और कुशल संचालन सुनिश्चित हो सके.
0: Perhaps the most satisfying part of this story is this, that the train has been designed, engineered and integrated entirely in India using indigenous technology.
1: तो इसी के साथ श्रोताओं, जैसे ही भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन के पहिए घूमने लगते हैं, वे सिर्फ यात्रियों को ही नहीं ले जा रहे हैं बल्कि वे एक संदेश भी ले जा रहे होते हैं, कि एक ऐसा संदेश कि भारत सिर्फ साफ सुथरी ऊर्जा, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसी टेक्नोलॉजी को अपना रहा है जो भविष्य को आकार देंगी.
0: Yes, Karishma, the story of a nation isn't written in a single day. It's rather written through countless milestones like these. And today, another remarkable chapter has been added to India's journey of progress.
1: और इसके साथ ही श्रोताओं, अब चलते हैं अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानते हैं कि उनके पास क्या विशेष है. और सबसे पहले बात ओडिशा की करेंगे. पुरी में भव्य रथ यात्रा आध्यात्मिक केंद्र बनी हुई है. वहीं कल भगवान जगन्नाथ के प्रति श्रद्धा ओडिशा से पूरी गूंज उठी. पूरे भारत में जीवंत जुलूसों, खूबसूरती से सजाए गए रथों, भक्ति संगीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और महाप्रसाद वितरण ने समुदायों को एक साथ लाया. एक रिपोर्ट.
2: In Ahmedabad, Gujarat's historic 149th Jagannath Rath Yatra began with the traditional Pahind Vidhi performed by the Chief Minister. In Delhi, the Jagannath Temple at Hotch Khas hosted the city's 48th Rath Yatra with kirtans, bhajans and Odia rituals. In Patna, ISKCON's grand procession featured a 40-foot hydraulic chariot, flower showers and 108 varieties of bhog. Devotees in Visakhapatnam, Jaipur, Guwahati, Kolkata, Gurugram and

0: Several other cities also marked the occasion with colorful chariot processions, Harinam Sankirtan, cultural programs and community feast, each adding its own regional flavor to the celebration. The spirit of Rath Yatra also traveled across the globe, from Chicago and London to Zurich, Dublin, New York, Toronto, Melbourne, Johannesburg, Nairobi, Paris and Berlin. ISKCON temples and local communities organized chariot festivals featuring devotional singing, cultural performances, yoga sessions and free prasadam, welcoming people from all backgrounds. The message of Rath Yatra remains timeless, that Lord Jagannath's journey is not merely the movement of a chariot but a celebration of faith, unity and humanity that transcends borders, languages and cultures. Aprajita Snatak, Akashvani News, Delhi.
1: And now from Odisha, we take you to Keralam, where the month-long observance of Ramayan Masam, which means the month of Ramayan, begins in that state with the start of Kari Kadakam, the last month of the Malayalam calendar. For generations in Keralam, Kari Kadam has been observed as a period of prayer, reflection and a spiritual renewal. And from today, the recitation of the Ramayan will become a daily ritual in thousands of homes and temples across the state. Temples have also lined up special recitation sessions and devotional programs throughout the month. Our correspondent has more on this.
2: Karkadagam, which falls between mid-July and mid-August, is traditionally known as the month of heavy monsoon rains in Kerala. In earlier times, when the season often brought illness and hardship, families tuned to the Ramayana for hope, courage and inner peace. The tradition continues now also. Most devotees in Kerala recite the Adhyatma Ramayana Kelipata, composed by Tunjatha Eduthachan, revered as the father of the Malayalam language. Many also follow a tradition schedule of recitation, reading the Balivadam chapter on the 15th day, Ravana Nigraham on the 20th day and concluding with Pattabhishekam, the coronation of Lord Rama on the final day of Karkadagam. Another important feature of Ramayana month is the Nalambala Darshan, a pilgrimage to four temples dedicated to Lord Rama and his brothers Lakshmana, Bharata and Shatrughna. The pilgrimage is especially popular in Thrissur and Kottayam regions of Kerala and attract thousands of devotees every year. To facilitate the pilgrimage, the Kerala State Road Transport Corporation and private tour operators have arranged special packages enabling devotees to visit all four temples in a single day. Smithy M. Paluriti, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
3: घने जंगल, आदिवासी संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देशभर में अपनी अलग पहचान रखता है। अब यह बस्तर जैविक खेती के कारण भी नई पहचान बनाने की ओर अग्रसर है। पेश है हमारे संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट।
4: बस्तर के कई गांव ऐसे हैं जहां किसानों ने वर्षों से अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं किया है। उनकी खेती पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से होती रही है। अब राज्य सरकार इन गांवों की पहचान कर उन्हें जैविक प्रमाणन दिलाने की दिशा में काम कर रही है। इससे यहां पैदा होने वाले धान, दालों, मसालों और अन्य कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने का रास्ता खुलेगा। हाल ही में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बस्तर के ऐसे गांवों का सर्वेक्षण कर राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम से जोड़ा जाए। जैविक प्रमाणन मिलने के बाद किसानों को अपने उत्पादों का वर्तमान कीमत की तुलना में 3 से 4 गुना तक अधिक मूल्य मिलने की संभावना है। बस्तर के किसानों ने वर्षों से जिस परंपरा को सहज रूप से अपनाया है, वही आज टिकाऊ कृषि का आदर्श बन रही है। यह पहल न केवल किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि बस्तर की प्राकृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने की भी मजबूत शुरुआत है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
1: Of course, Karishma, the monsoon season is going on and the arrival of the monsoon is a season of hope and celebration for farming communities across India. In western Odisha, the first showers bring with them a unique cultural tradition known as Kadu Jatra or the Mud Festival. And this vibrant festival reflects the region's deep connection with agriculture, nature and community life. We have a report on this.
5: Observed during the month of Asadha, soon after the first monsoon rains, Kadu Jatra marks the beginning of a new agricultural season. Before farmers begin sowing their fields, villagers gather in open grounds or

0: to keep us safe all the time. Their extraordinary courage and supreme sacrifices in the face of the enemy remain a timeless source of inspiration for the nation.
1: और इसके साथ ही आज पुण्यतिथि है भारतीय सिनेमा की महान अभिनेत्री गायिका और फिल्म निर्माता कानन देवी की। उन्हें बांग्ला सिनेमा की पहली सुपरस्टार माना जाता था। कहा जाता है कि बेहद कठिन परिस्थितियों से निकलकर उन्होंने अपने अभिनय और गायन के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के बल पर भारतीय सिनेमा में एक विशिष्ट पहचान बनाई। कानन देवी ने मुक्ति, विद्यापति, स्ट्रीट सिंगर, लगन, अभिनेत्री और पराजय जैसे अनेक यादगार फिल्मों में अभिनय किया। उनकी मधुर आवाज और प्रभावशाली अभिनय ने उन्हें देश भर में लोकप्रिय बना दिया और इसके साथ ही उन्हें कई अवार्ड भी दिए गए, जिसमें कानन देवी को वर्ष 1968 में पद्मश्री तथा 1976 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

0: और इसके साथ ही आज भारत के महान गणितज्ञ प्रोफेसर सी एस शेषाद्री की पुण्यतिथि है। वे भारत के विश्वविख्यात गणितज्ञ थे और बीज गणित ज्यामिति के क्षेत्र में उनके शोध को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत सम्मान मिला था। इसके साथ ही उन्हें पद्म भूषण, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार तथा विज्ञान जगत के प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया था।
1: मूविंग ऑन, वी ऑल्सो पे ट्रिब्यूट टू मालती घोषाल, who was a legendary Indian Rabindra Sangeet singer and one of the esteemed Panchakanya exponents of Rabindranath Tagore's music. She left an indelible mark on Bengali music before retiring from the industry in 1952. Before she became known for as a foremost interpreter of Tagore's music, Ghoshal trained rigorously under several maestros in tappa, kirtan, classical music. She was also a proficient sitar player. And we wish Zarina Wahab and give her a heartfelt tribute to this veteran Indian actress, Zarina Wahab, who is known for her enduring grace, doe-eyed simplicity and remarkable versatility across a career spanning over 5 decades. It's her birthday today. Wishing her a very happy birthday. Known for playing deeply emotional and powerful characters, she remains a revered figure in Indian cinema. And of course, she was trained. She is an alumni of a Film and Television Institute of India and made her cinematic debut in Devanand's 1974 musical Ishq Ishq Ishq.
2: ठीक है, अब मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। ये देखो देख, साफ सुथरी रहा कर, हमेशा बाल संवार के रखा कर, 4 नाखून काटा कर, 5 खाना खाते हुए चुप रहा कर, 6 नजरें झुका कर चला कर, 7 मुंह फाड़ फाड़ कर मत हंसा कर, 8 चुप जब देखो बक बक बक बक, भगवान ऐसी बेटी दुश्मन को भी ना दे।
0: लेकिन करने का तो इसके साथ ही अनुमति दीजिए करिश्मा राय और अनुजा कुमार को। नमस्कार,
1: नमस्कार।

0: அரங்கிசையில் இதுவரை டாக்டர் பிரமீளா குருமூர்த்தி அவர்களின் பாட்டு கேட்டீர்கள். டாக்டர் எம் நர்மதா அவர்கள் வயலின், சேர்த்தலை ஆர் அனந்தகிருஷ்ணன் அவர்கள் மிருதங்கம். தொடர்வது ஹிந்தியில் செய்தி அறிக்கை, டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பிரியங்கா அரோடா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधा में सुधार करना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देना है। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक की सेवा को प्राथमिकता देती है, उनके जीवन को सुगम बनाती है और उन्हें प्रगति के नए अवसर प्रदान करती है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और सेक्टर 46 के सरकारी कॉलेज में छात्रावास भवनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारावपेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। संसद के मानसून सत्र से पहले मंत्रियों के समूह की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राम मोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी चेन्नई वानोली 100.1 FM गोल्ड अलेवरिसे नेरम 6:05

0: சில நொடிகளில் தொடர்வது விஸ்லேஷன். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सरफिरोजी। श्रोताओं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने रेल परिवहन में हाइड्रोजन तकनीक को अपनाने की दिशा में

महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन क्यों महत्वपूर्ण है, ये भारतीय रेलवे में चल रहे व्यापक सुधारों से कैसे जुड़ी है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में इसकी क्या भूमिका है और स्वच्छ, सुरक्षित तथा टिकाऊ परिवहन व्यवस्था के निर्माण में ये पहल भारत के लिए कितनी अहम साबित हो सकती है। श्रोताओं, भारतीय रेल केवल नई रेलगाड़ियां ही नहीं चला रहा, बल्कि खुद को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप भी लगातार बदल रहा है। इसी सोच के साथ रेलवे ने इस वर्ष 52 सप्ताह 52 सुधार का लक्ष्य तय किया है। इस अभियान को रिफॉर्म एक्सप्रेस नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत अब तक 17 सुधार लागू किए जा चुके हैं। इन सुधारों का उद्देश्य माल ढुलाई, लॉजिस्टिक्स, निर्माण कार्य, परियोजनाओं के क्रियान्वयन, वैगन डिजाइन, कौशल विकास और कारोबार

0: अभियान को रिफॉर्म एक्सप्रेस नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत अब तक 17 सुधार लागू किए जा चुके हैं। इन सुधारों का उद्देश्य माल ढुलाई, लॉजिस्टिक्स, निर्माण कार्य, परियोजनाओं के क्रियान्वयन, वैगन डिजाइन, कौशल विकास और कारोबार को आसान बनाने जैसे क्षेत्रों में बदलाव लाना है। आज शुरू हुई भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित रेलगाड़ी भी इसी परिवर्तन की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आइए जानते हैं इस रेलगाड़ी की क्या विशेषताएं हैं और हाल के वर्षों में भारतीय रेल में कौन कौन से बड़े सुधार किए गए हैं।
1: भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का डिजाइन और विकास पूरी तरह से भारत में किया गया है। इसे अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन यानी RDSO की तकनीकी मंजूरी के अनुसार तैयार किया गया है। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये ट्रेन उत्तर रेलवे के जींद सोनीपत रेलखंड पर चलेगी। इसमें कुल 10 कोच है और ये 1200 किलोवाट की हाइड्रोजन ईंधन सेल से मिलने वाली बिजली पर चलती है। इसकी अधिकतम परिचालन गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसकी डिजाइन गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस ट्रेन में लगभग 2600 यात्री सफर कर सकेंगे। ये जींद, गोहाना और सोनीपत के बीच कई मध्यवर्ती स्टेशनों पर भी रुकेगी। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत इसकी हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया से बिजली तैयार होती है। इस पूरी प्रक्रिया में केवल जल वाष्प और ऊष्मा निकलती है, यानी ये डीजल से चलने वाली ट्रेन के तुलना में कहीं अधिक स्वच्छ तकनीक है। हाइड्रोजन में ऊर्जा की मात्रा भी अधिक होती है। जहां डीजल से 43 मेगा जूल प्रति किलोग्राम ऊर्जा मिलती है, वहीं हाइड्रोजन से लगभग 120 मेगा जूल प्रति किलोग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। यही वजह है कि इसे रेल परिवहन के लिए सबसे स्वच्छ ईंधन विकल्पों में से एक माना जा रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन भारतीय रेल में हो रहे बदलाव की केवल एक कड़ी है। रेलवे इस वर्ष रिफॉर्म एक्सप्रेस अभियान के तहत 52 सप्ताह में 52 सुधार लागू करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। अब तक 17 बड़े सुधार लागू किए जा चुके हैं। इनका उद्देश्य रेलवे को अधिक आधुनिक, तेज, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। इन सुधारों के तहत माल ढुलाई व्यवस्था में भी कई बदलाव किए गए हैं। फ्लाई ऐश, उर्वरक, खाद्यान्न, दाल, आटा और पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। कई वस्तुओं के लिए कंटेनर आधारित परिवहन को बढ़ावा दिया गया है, जिससे सामान को सुरक्षित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सके और लॉजिस्टिक्स की लागत कम हो। रेलवे ने कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों के लिए पूरे देश में एक समान लाइसेंस व्यवस्था भी लागू की है। इससे कारोबार करना आसान होगा और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए भी कई बदलाव किए गए हैं। टिकट रद्द करने और रिफंड की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। जल्द ही यात्री ट्रेन के रवाना होने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। इसके अलावा ऑनबोर्ड सफाई, गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों का विस्तार, रेल टेक नीति और रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल के डिजिटलीकरण जैसे सुधार भी लागू किए गए हैं।
0: श्रोताओं, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित रेलगाड़ी को केवल एक नई रेल सेवा के रूप में देखा नहीं जा रहा। इसे स्वच्छ ऊर्जा, आत्मनिर्भर भारत और भारतीय रेल के भविष्य से जुड़े एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद में अपने संबोधन में इस पहल के महत्व और इससे जुड़ी संभावनाओं पर भी विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये हाइड्रोजन रेलगाड़ी केवल प्रदूषण मुक्त परिवहन का माध्यम नहीं है, बल्कि मेक इन इंडिया, नई तकनीक और रोजगार के नए अवसरों का भी प्रतीक है।
2: भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन धुआं रहित तो है ही, ये मेक इन इंडिया का भी एक बहुत सफल उदाहरण है। इस हाइड्रोजन ट्रेन को भारत के ही इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है, भारत की ही कंपनी ने इसको बनाया है। यह हाइड्रोजन ट्रेन बाकी ट्रेनों से बिल्कुल अलग है। इसके लिए पूरा सिस्टम अलग चाहिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अलग चाहिए। यहाँ जींद में भी इसके लिए तमाम सारी व्यवस्थाएं बनाई गई है और आने वाले समय में यहाँ हाइड्रोजन ट्रेन से जुड़ा और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। नई नई फैक्ट्रियां लगेगी जो हाइड्रोजन ट्रेन नेटवर्क की जरूरतों को पूरा करेगी।
0: श्रोताओं, ये पहल केवल रेलवे तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत की राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से भी जुड़ी हुई है। इस मिशन का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है, साथ ही स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर

0: भारत के लक्ष्य को गति देना, फॉसिल फ्यूल के आयात पर निर्भरता कम करना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और आइए अब विस्तार से समझते हैं कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है और भारत के लिए इसकी अहमियत क्यों बढ़ती जा रही है।
1: भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से काम किया है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। इसी दिशा में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एक अहम कदम है। इस मिशन का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। इसके माध्यम से भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ दुनिया के ऊर्जा परिवर्तन में भी बड़ी भूमिका निभाना चाहता है। इस मिशन के लिए 2029-30 तक 19,744 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लक्ष्य है कि 2030 तक हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाए। इसके साथ 125 गीगावाट नई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी जाए और लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाए। मिशन के तहत देश में बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित किए जा रहे हैं। शुरुआती चरण में कम से कम 2 हब बनाने की योजना है। इनके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा भी तैयार किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत फैसले भी लिए गए हैं। इनमें नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क में छूट, समयबद्ध कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस जैसी सुविधाएं शामिल हैं। मिशन के तहत हाइड्रोजन के भंडारण, पाइपलाइन, टैंकर और वितरण नेटवर्क जैसे बुनियादी ढांचे का भी विकास किया जा रहा है। साथ ही नए मानक तैयार किए जा रहे हैं ताकि ये तकनीक सुरक्षित और वैश्विक स्तर के अनुरूप हो। अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रेटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप यानी शिप के तहत सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस मिशन के तहत इस्पात क्षेत्र में 4 प्रायोगिक परियोजनाएं, परिवहन क्षेत्र में हाइड्रोजन वाहन और रिफ्यूलिंग स्टेशन की एक पायलट परियोजना और तुतिकोरिन बंदरगाह पर हाइड्रोजन बंकरिंग और रिफ्यूलिंग सुविधा की परियोजना भी शुरू की गई है। शोध और विकास के लिए 23 परियोजनाएं, परीक्षण सुविधाओं के लिए 5 परियोजनाएं और 4 हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर भी स्वीकृत किए गए हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: श्रोताओं, भारत ने अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता का 51.5% हिस्सा हरित और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से हासिल कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है। खास बात यह है कि भारत ने पेरिस समझौते के तहत वर्ष 2030 के लिए निर्धारित इस लक्ष्य को 5 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और स्वच्छ परिवहन जैसी पहलों पर लगातार काम कर रही है। देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन रेलगाड़ी भी इसी व्यापक दृष्टि का हिस्सा है। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने, तकनीकी सहयोग रहा अरुणदीप सिंह का।
2: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना हरियाणाराज्यस्य जिन्दनगरे भारतस्य प्रथम हाइड्रोजन रेलयानस्य हरितध्वजप्रदर्शनपूर्वकम् उद्घाटनं कृतम्। 14,000 कोटिरूप्यकाणां विविधविकासपरियोजनानां शिलान्यासञ्चापि विहितम्। DGMA इत्यनेन नौकायानस्वामिभ्यः होर्मुज्जलसन्धि इत्यतः यात्रां कुर्वतां भारतीयानां नाविकानां नियुक्तिं परिहरन्त्विति निर्देशो दत्तः। यूरोपीयसङ्घः पाकिस्तानस्य मानवाधिकारस्थितिं प्रति गभीरा चिन्तां प्राकटयत्। पाकिस्तानदेशं व्यापारलाभाय अन्ताराष्ट्रियप्रतिबद्धतायाः अनुपालनं कुर्यादिति च निर्दिष्टम्। अद्य अरुणाचलप्रदेश, असम, मेघालय, ओडिशा राज्यानां च केषुचित् भागेषु प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यतीति ऋतुविज्ञानविभागस्य पूर्वानुमानमस्ति। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य क्रीडिका PV सिन्धुः टोक्यो नगरे जापान ओपन क्रीडायाः उपान्त्यचक्रं प्रविष्टवती।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आज के कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ एसपी शर्मा। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी शुक्रिया, थैंक यू।
1: और सबसे पहले सुनते हैं मुख्य समाचार।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस गेन ओवर 1%, सेंसेक्स एड्स नियरली 1000 पॉइंट्स एंड निफ्टी रिक्लेम्स 24,300 लेवल। एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड इन द नेगेटिव टेरिटरी एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज।
1: घरेलू शेयर बाजार आज 1% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की तेजी आई। निफ्टी ने 24,300 के स्तर को फिर से प्राप्त किया। एशियाई शेयरों में आज गिरावट का रुख और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़े।

0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज 1% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार की बात करें तो मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.2% की गिरावट आई। इससे पहले बाजार आज सुबह थोड़ी तेजी के साथ खुले थे और इंडेक्स की बड़ी कंपनियों में उछाल की वजह से पूरे सत्र के दौरान ऊपर की ओर बढ़ते रहे।
0: Benchmark domestic equity indices ended over 1% higher today. Sensex surged by 965 points to close at 78,151. Nifty gained 262 points to settle at 24,334. However, in the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index dropped 0.4% and the small-cap 100 index fell by 0.2%. Earlier, the markets opened on a moderately positive note and sustained their upward trajectory throughout the session, supported by gains in index heavyweights.
1: सेंसेक्स की बात करें तो आज 30 में से 24 कंपनियों के शेयरों में तेजी दर्ज हुई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में टेक महिंद्रा के शेयरों में 3.9%, कोटक महिंद्रा बैंक में 3.4% और टाटा कंसल्टेंसी में 3% का उछाल देखा गया। वहीं दूसरी तरफ सनफार्मा में 0.9%, केंट में 0.7% और भारतीय एयरटेल में 0.6% की गिरावट आई।
0: In the sectoral indices on the BSE, 14 out of the 25 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, private banks as well as top 10 bank index jumped 1.8%. Mid small private quality tilt index and BankEx rose by 1.6% and realty added 1.4%. In contrast, telecommunications dropped 1.5%, capital goods slipped 1.3%, then healthcare lost 1.2%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,500 companies declined, 1,722 companies advanced, and 190 companies remain unchanged.
1: अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर चढ़कर 96.28 पर बंद हुआ। एसपी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी शुक्रिया।
1: आज भारतीय शेयर बाजार में हमें उल्लेखनीय तेजी देखने को मिली है, तो आपकी नजर में इस मजबूती के प्रमुख कारण क्या रहे? क्या ये केवल निवेशकों की भावना है जो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही है, या फिर आर्थिक संकेतक भी इसके पीछे रहे हैं जो इस तेजी को आगे ले जा रहे हैं?
2: देखिए, आज का जो बाजार की जो मजबूती है उसके पीछे हमारे डोमेस्टिक स्ट्रेंथ है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे जो हेडविंड्स हैं, ग्लोबल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टसल है, वो अभी भी जारी है, बल्कि और डीपन हो रही है। यूएस और ईरान में जो वॉर है वो और इंटेंसिफाई हुई है। तो आज का जो बाजार, जो हमने कुछ दिनों से देखा कि बाजार एक मजबूती के दौर में आया हुआ है, उसके पीछे हमारा जो घरेलू एक सपोर्ट है, जो घरेलू एक हमारे नतीजे हैं, जो कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और दूसरा जो हमारे जो फंडामेंटल, जो अभी रिसेंट हमने देखा कि हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छे से ग्रो किए, जो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि आपका जो एक्सटर्नल रेजिलियंस कैसा है। और तीसरा, हमारा जो फॉरेक्स है वो बहुत स्टेबल है, भले ही रूपी के ऊपर अभी प्रेशर है बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्योंकि क्रूड में तेजी देखी गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से, वहाँ पे वापस एक जो प्रॉब्लमेटिक जो सिचुएशन सामने आई है, तो जिसकी वजह से क्रूड प्राइसेस बहुत ही प्रेशर में आए हैं और रूपी के ऊपर उसका प्रेशर हमें आते हुए दिखाई दिया। लेकिन जो ओवरऑल हम कहेंगे कि जो सेंटिमेंट है वो बहुत ही पॉजिटिव है। उसके पीछे जो पहले एक ऐसी आशंका थी कि ये जो क्वार्टर है, जो अप्रैल से जून तक का जो क्वार्टर है, इसमें बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि फेवरेबल नहीं है, युद्ध हुआ और अभी भी जारी है, तो इनका इम्पैक्ट आएगा कॉर्पोरेट रिजल्ट्स

0: ऊपर इम्पैक्ट आएगा, तो वैसा एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। हमें एक बहुत ही स्टेडी जो ग्रोथ है वो हमारे जो बिजनेसेस ने इस दौरान भी की है।
1: डॉक्टर शर्मा, वी हैव आल्सो सीन दैट निफ्टी बैंक वेंट अप बाय 1% एंड यू मेंशनड अबाउट कॉर्पोरेट रिजल्ट्स। द फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स आर नाउ आउट एंड वी कैन सी अबाउट 4 बैंक्स हैव डिक्लेयर्ड पॉजिटिव रिजल्ट्स एज वेल। व्हाट हैज बीन द रीजन बिहाइंड banking performance at the fundamental level for our economy?
0: Yes, Arjun, because our banks are very resilient and strong, and our economy is growing significantly because with this support of the growth, banks are always performing better as compared with the previous quarters or the year on year, because we are moving ahead. We are growing at around 7%. Last year we grew at 7.7%. For the current year also, again, we are expecting that growth will be somewhere between 6.5 to 7%. So this is the economic activity which is happening and supporting the banking sector trajectory. And second, our banks are very, very resilient. They are not facing any headwind or some repercussion of such developments at the West Asia level. Otherwise, many countries are facing such kind of problems like the banking stress, but in India our banking system remains very, very strong at every crisis, whether the coronavirus or the before that Lehman crisis or now the geopolitical crisis. So banks are always very strong.
1: So there's no liquidity issue basically as far as
0: I don't see any liquidity issue. Liquidity is adequate in the system. Yes.
1: But IT index saw a rise today by 1% as well. How do you see their results coming out in the first quarter?
0: Yes, Arjun, this is very important. Earlier, there were many apprehensions that AI is now impacting the trajectory of IT companies or undermining the growth of the IT companies because they will not be able to perform in the era of artificial intelligence. But I always provided my views, my positive view that there is no impact of the AI on the IT companies. If the IT shares are declining somewhere or sometime, that is the impact of Middle East crisis only or the fluctuation in the exchange rates. So that is proven now because IT companies are providing very good results, and that is in front of us. And going forward, I don't see any impact of the AI on the IT companies because these are two separate segments. There is no correlation that if the AI is moving ahead with a lot of investments and that will impact the trajectory of the IT companies. These both are, I believe, the complementary segments go hand in hand to support the economy.
2: एसपी, अगर पिछले सप्ताह की हम तुलना करें वापस मार्केट की हम बात करते हैं तो इस सप्ताह एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है, तो जिसमें एफआईएस और डीआईएस की दोनों की भूमिका को सराहा गया है कि हाँ दोनों ने काफ़ी पैसा भी मतलब निवेश किया है। और साथ में एक और प्रश्न मेरा यहाँ पर ये कि स्मॉल कैप और मिड कैप में लगातार हम गिरावट भी देख रहे हैं।
0: देखिए, इसमें ऐसा है, पहले तो जो इन्वेस्टमेंट है, जो एफआईआई और डीआईए का इंडिया में जो रुख है वो ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन बीच में कुछ फ्लक्चुएशन आती है। खास करके एफआईआई काफ़ी सेंसिटिव है टुवर्ड्स द ग्लोबल डेवलपमेंट्स। जब भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट, नेगेटिव डेवलपमेंट्स होती है, देन दे पुल देयर मनी, एंड वेन देयर इज सम पॉजिटिव डेवलपमेंट, देन दे पुट अ सिग्निफिकेंट मनी इन द मार्केट। तो कुल मिला के जो है उनका रवैया एक बैलेंस्ड रहता है। एक फ्लक्चुएशन बहुत होती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ऑन एन एवरेज दे आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट।
2: बैलेंसिंग
0: दे आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, दे आर द ग्रेट इन्वेस्टर्स। दो आवर मार्केट्स आर सपोर्टेड बाय द रिटेलर्स। अभी तो हमारे ऊपर एफआईआई का कोई इतना ज्यादा प्रभाव नहीं होता क्योंकि हमारा रिटेल सेगमेंट ही बहुत तेज गति से सपोर्ट करता है। जो हमारे रिटेल ट्रांजेक्शन्स हैं वो ही बहुत अच्छे सिग्निफिकेंट लेवल पे हैं। और दूसरा जो आपका प्रश्न है कि जो स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स, एक्चुअल में जब एक मार्केट में चर्निंग होती रहती है, कई बार जो इन्वेस्टर है वो देखता है कि उसको जो लार्ज कैप्स हैं उसमें बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन सम देयर इज सम प्रेशर ऑन दी स्मॉल कैप और मिड कैप, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है।
2: ओके,
0: मैं अपना चर्निंग करके कुछ अपना मनी प्रॉफिट बुक करके उधर शिफ्ट कर लेता हूँ। लेकिन ओवरऑल जैसे एफआईआई और डीआईएस का मैंने बताया, इनमें भी एक बैलेंस जो है

0: निरंतर बना रहता है। जो स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स हैं वो अगर आप लॉन्ग टर्म ट्राजेक्टरी में देखेंगे, दीज आर ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली। स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स में ओवरऑल ग्रोथ जो है लॉन्ग टर्म के मीडियम टू लॉन्ग, हाँ शॉर्ट टर्म में जरूर कुछ फ्लक्चुएशन हो सकती है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ देयर वीकनेस एक्चुअली, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेफरेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स। दे आर समटाइम्स दे इन्वेस्ट इन द ब्लू चिप्स एंड समटाइम्स दे इन्वेस्ट इन द स्मॉल एंड मिड कैप।
1: स्पीकिंग ऑफ ब्लू चिप्स एंड selective stocks, you've seen that index heavyweights, as it is mentioned in the story as well, gains in index heavyweights, a company which has a great deal of business in the oil and gas space and has a weightage of 9 to 12% on the Sensex, went up by 2%, and as a result we saw the Sensex also go up. What is the prospect in the oil and gas sector?
0: Prospects are very strong because we are gaining great competitiveness and strength in this segment, and we have many reforms in our domestic economy to make this sector more and more resilient and competitive, and we have great possibilities to expand the businesses in this segment, and that's why I believe this is the one of the great promising sectors of the Indian economy. And as you said, the strength of the blue chips, because many of the companies are showing the positive results. Now, on an average, I believe the trajectory is somewhere between 10 to 12, 15% in the growth numbers. So this is very good in the era of such kind of developments at the global level, headwinds and geopolitics. We are growing significantly in the double digits.
2: और आगे बढ़ते हैं। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज गिरावट देखी गई क्योंकि सेमीकंडक्टर शेयरों में लगातार नुकसान से पूरे क्षेत्र में निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है। ताइवान का ताइएक्स 6.5%, जापान का निक्केई 4%, चीन का शंघाई कंपोजिट 3%, हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1.8% और सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स लगभग 0.5% नीचे आ गया। वहीं दक्षिण कोरियाई बाजार आज छुट्टी के कारण बंद रहे। प्रमुख यूरोपीय बाजारों की हम बात करें तो वहां नकारात्मक रुख देखा जा रहा था। ताजा जानकारी के अनुसार फ्रांस का कैक 40 0.8%, जर्मनी का डेक्स 0.7% और लंदन का फुटसी 100 0.2% नीचे आ गया। एसपी, अगर एशियाई बाजारों की हम बात करें तो लगातार एक बड़ा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है और सेमी कंडक्टर शेयरों का यहाँ पर जिक्र करना जरूर हमारे लिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि वहां पर भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि किन कारणों की वजह से गिरावट हो रही है?
0: देखिए, जो एक तो वापस जो जो युद्ध है, जो वॉर है, वो इंटेंसिफाई हुई है मिडिल ईस्ट में, और दूसरा जो मैंने बताया कि इंडिया का मार्केट रेजिलियंस के बेसिस पे, डोमेस्टिक रेजिलियंस के बेसिस पे ग्रो कर रहा है। अदरवाइज जो हेडविंड्स हैं वो वापस रिजुविनेट हो गई हैं। जो पहले हम देख रहे थे एक शांति का माहौल बन रहा है, बातचीत है, यूएस और ईरान में बातचीत होने वाली है या हो रही है या फिर आने वाले टाइम में हो सकती है, वो अब सब काफ़ी संभावनाएं जो हैं वो धुंधली नज़र आ रही हैं। उनमें कुछ अब ऐसे क्लियर कट हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि ये किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, बल्कि जो युद्ध है वो प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया शेप ले रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जो है ऐसे वातावरण में भी बहुत अच्छे से रेजिलिएंट शो कर रही है। जैसे आपने बताया कि ये इकोनॉमीज जो है इमर्जिंग मार्केट्स आर फेसिंग द फ्लक्चुएशंस, वो बात वो युद्ध का सीधा प्रभाव है कि मार्केट्स कोई डायरेक्शन नहीं ले पा रही हैं। जैसे आज के दिन कुछ भी स्टेटमेंट आएगा यूएस की तरफ से तो पॉजिटिव है स्टेटमेंट, तो मार्केट्स एक पॉजिटिव मोड में आ जाएंगे, कुछ उसमें नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव चले जाएंगे। तो उनका एक सस्टेन्ड जो रवैया जो वो नहीं बन पा रहा है।
2: अभी अगर चाइना के मार्केट की हम बात करते हैं तो वहां पर देखा जा रहा है कि लंबे समय से शेयर बाजार में उथल पुथल सी स्थिति देखी गई है, तो निवेशकों की क्या चिंता बढ़ रही है चाइना के मार्केट में पैसा लगाने में, वो एशिया के जो दूसरे मार्केट्स हैं या भारत का रुख कर रहे हैं?
0: देखिए, भारत तो एक प्रॉमिसिंग इकोनॉमी है ही, भारत की तरफ जो रुख है वो तो हमेशा बना रहेगा और आने वाले टाइम में ये रुख और मजबूत होगा क्योंकि हमारी जो रिफॉर्म्स हैं जो हमने पिछले काफ़ी वर्षों में की, 10-12 वर्षों में की, उनके अभी हम रिजल्ट देख रहे हैं। पोस्ट कोविड ईयर्स में उनके बहुत ही विजिबल रिजल्ट आने शुरू हुए, जो कि 21-22 से लेके हम 25-26 तक ऑन एन एवरेज 7% से ऊपर ग्रो किए हैं। और ऐसी अवस्था में हमारा एक्सपोर्ट का अगर आप पिछले 3 महीने में देखेंगे, अप्रैल, मई, जून, तो एवरेज जो है 13% बनता है। एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ऐसे माहौल में जब ग्लोबल इकोनॉमी इज इम्पैक्टेड बाय सो मेनी हेडविंड्स, डिमांड इज डिसेलरेटिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑल्सो डिसेलरेटिंग, इंडियाज एक्सपोर्ट्स आर ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली।

0: इन दी हाई डबल डिजिट्स, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और लेकिन जब चाइना का भी अगर हम आप 2026 से लेकर 30 तक का एवरेज ग्रोथ रेट देखें, दैट इज़ लेस देन 4%। इंडिया इज 6.5-6.6%। आप अंतर देखिए कितना है। तो चाइना का स्टोरी काफ़ी डिमिनिश हो रहा है, और जो उसके टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स हैं, जैसे अभी आपने बात किया कि जो सेमीकंडक्टर के शेयर्स में, वो एआई का जो एक कई बार बहुत ही एम्पलीफायर इम्पैक्ट आता है कि एआई से जो स्टॉक्स हैं उनको बहुत बढ़त मिलेगी, और एक बार में फिर कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि जी शायद उस तरीके से ये आगे नहीं ग्रो की है, तो प्राइसेज इम्पैक्ट होते हैं।
1: Let's move on to the US stock market. Wall Street ended on a negative note yesterday, dragged down by a decline in chip stocks. Among the major indices, Nasdaq Composite shed 1.5%, S&P 500 dropped 0.5%, and the Dow Jones Industrial Average dipped 0.2%. On the economic front, weekly jobless claims fell by 8,000 last week to 208,000, according to data released by the Labor Department. Dr. Sharma, we are seeing that in the spot market in the US, there has been a fall in valuation. Chip stocks have taken a hit. There's been a global sell-off, including the Asian markets that we were talking about earlier. NASDAQ futures is also showing a drop in terms of future valuation. And all of this is foundational on the attacks. Again, US attacks on Iran. Iran is then expanding its attacks to Syria and Bahrain, where the US military bases are. How do you see the US economy also in terms of its inflation numbers?
0: Yes, Arjun, because this is majorly because of West Asia intensification. Otherwise, US economy is recovering a little bit. Like inflation, inflation has decelerated from more than 4% to at 3.5%. Better than the expectations. Expectations was 3.8%. And now there is a great room for Fed to remain stable, not to increase the Fed rate in the coming policy review of 29th of July or 30th July. So that is the positive news for the US economy. But still, the negative news from the West Asia are impacting the sentiments of the stock market, and markets are fluctuating. So I believe this war will impact the US economy significantly in the coming times, if the peace process is not retained in the coming times.
1: You're also seeing in the US economy that IT companies are facing labor union issues because of such heavy investment in artificial intelligence and data centers, and a lot of highly skilled IT workers are being laid off, not because of concerns about the company moving forward, but just so that profit margins go up. How do you see this in the US economy right now?
0: Yes, Arjun, because many emerging countries are very competitive in the IT development, like India. So those companies are facing such global competitiveness and not able to grow in the great numbers, competitive numbers. That's why and along with the investments in AI, that is sentimental, that AI will impact the IT. That is the normal phenomenon.
1: And it's also being seen as circular.
0: Yes, yes. So that's why they are feeling such kind of headwinds.
1: Let's have a look at the foreign exchange reserves now.
2: जी हाँ, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 10 जुलाई को खत्म हुए सप्ताह में आंशिक रूप से 964 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 675.1 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इस सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा संपत्ति 930 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 546.5 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई है, और सोने का भंडार 24 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 105.2 अरब अमेरिकी डॉलर का हो गया है। एसपी, अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे फॉरेक्स रिजर्व की, ऐसे में ये जो आंकड़े हैं थोड़ा बहुत मतलब हमें ये दर्शाते जरूर हैं कि भारत की जो स्थिति है और गति है पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रही है।
0: जी, मैंने बताया आपको कि जो फॉरेक्स है वो बहुत मजबूत है, और अभी ये हमने न्यूज़ देखी है कि बहुत अच्छे से बढ़े हैं, तो ये काफ़ी वीक से इनमें बढ़ोतरी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपका फॉरेक्स स्ट्रांग है एंड यू आर ऑल्सो स्ट्रांग इन द एक्सटर्नल सेक्टर इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपोर्ट्स, कैड आपका कंट्रोल में है, तो ये तीनों चीज़ें मिलके, कैड कंट्रोल में हो, फॉरेक्स आपका स्टेबल हो, और तीसरा एक्सपोर्ट्स आर रेजिलिएंट, तो बहुत अच्छी बात पूरे देश की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट है जो इकोनॉमी की रेजिलियंस को और फॉरेन अट्रैक्टिवनेस को और इंक्रीज करता है।
2: Right.
1: Moving on to more news. The Office of Economic Advisor, OEA, Department for the Promotion of Industry and Internal Trade will release

0: favorable number, because we were anticipating that crude will now fall to 70, somewhere between 70 to 75 and stable there. But now again, this will be a great challenge for the global inflation trajectory, and not only the inflation numbers, but also impact the many segments of the economy, because economic activity is greatly supported by the energy, like the crude oil prices.
1: Agriculture also, because sulfur,
0: yes, agriculture inputs are also increase and impact the प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द फार्मर्स.
2: तो इसमें एसपी ये भी तो है कि वैश्विक मांग और आपूर्ति को लेकर के संतुलन बनाना आजकल पूरे विश्व के लिए बड़ा मुश्किल होगा, खासतौर पे उन देशों के लिए तो भी ज्यादा ये मुश्किल हो रहा है जो तेल का निर्यात करते हैं.
0: जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया, जो निर्यात करते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है. लेकिन हम आशा कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में वापस कुछ ऐसा पीस प्रोसेस हो, कोई ऐसी अनाउंसमेंट ट्रंप साहब से आए कि जिससे वो फिर बातचीत करने की बात में ईरान को बोलें और दोनों एक टेबल पर आएँ और कुछ फाइनल हो. बट इस जंक्चर पर जो सिचुएशन है दैट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी.
1: Moving on to the bullion market. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 0.3% up at 1,41,170 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.1% down at 2,15,740 rupees per kilogram a short while ago.
2: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 0.2% ऊपर आकर 1,46,576 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी 0.4% नीचे आकर 2,15,070 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी. एसपी, जिस तरह से सोने का एक ट्रेंड सा चल रहा है, बहुत ही संभलते हुए अपना एक दिशा की ओर आगे ले जाता है तमाम चीज़ों का, खासतौर पर अगर निवेशकों की दृष्टि से हम देखें तो निवेशक शायद अपना पैसा ये सोच करके इन्वेस्ट कर रहे हो कि बहुत ही संभल करके हम इसमें चल सकते हैं मार्केट के बजाय.
0: जी बिल्कुल, बिकॉज गोल्ड एक स्टेबल कमोडिटी है, बट शॉर्टर पीरियड में कई बार बहुत फ्लक्चुएट भी करती है, तो इन्वेस्टर को इसमें बड़ा सोच समझ के चलना होगा कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स तो अच्छे हैं बट शॉर्ट टर्म में कई बार बहुत ही फ्लक्चुएट होके जो लोग इसमें स्पेकुलेशन करना चाहते हैं उनको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है. तो इसमें एक स्टेबिलिटी माइंड में लेके चलना होगा कि अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक उस स्टेबिलिटी के साथ सोचना होगा. अदरवाइज क्योंकि ग्लोबल फ्लक्चुएशन इतनी है, इतने ज़्यादा हर रोज़ अनाउंसमेंट्स हैं, आप देख रहे हैं कि जैसे क्रूड में फ्लक्चुएशन आती है, डॉलर में फ्लक्चुएशन आ रही है, तो गोल्ड भी उन्हीं चीज़ों में, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स.
2: एसपी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: जी शुक्रिया, थैंक यू.
1: And now our closing headlines in English. Benchmark domestic stock market indices gain over 1%. Sensex adds nearly 1,000 points. Nifty reclaims 24,300 level. Asian stock market indices end in the negative territory. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
2: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया. इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधा में सुधार करना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देना है. उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक की सेवा को प्राथमिकता देती है, उनके जीवन को सुगम बनाती है और उन्हें प्रगति के नए अवसर प्रदान करती है. श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है.
5: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है. पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है.
4: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा

शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर एक पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसाराव पेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों और अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। संसद के मॉनसून सत्र से पहले मंत्रियों के समूह की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राम मोहन नायडू और किरण रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने की 13 अगस्त तक चलेगा। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री ट्रेन की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे इस मामले में एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पे महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पे राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और कई का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधा में सुधार करना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देना है।
1: साथियों, विकास कार्यों को गति देते हुए अब यहाँ जालंधर से कई नई रेल सेवाएं शुरू की गई है। आज अमृतसर से काशी के बीच रेल सेवा भी शुरू हुई है। इससे गुरु रविदास जी के भक्तों के लिए पंजाब से काशी जाना और अधिक आसान हो जाएगा।
0: श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जालंधर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक की सेवा को प्राथमिकता देती है।
1: हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजना

0: योजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसाराव पेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक की कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नई दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में उन्होंने ये बात कही। संसद के मॉनसून सत्र से पहले मंत्रियों के समूह की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राम मोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने की 13 अगस्त तक चलेगा। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi inaugurated and laid foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees from Jalandhar. These projects are aimed at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. Soon after reaching Jalandhar from Chandigarh, Mr. Modi inaugurated 75 redeveloped stations, including Jalandhar Cant under the Amrit Bharat Station Scheme. He inaugurated redeveloped railway stations across 20 states virtually, which include SAS Nagar Mohali Railway Station, Sri Muktasar Sahib Railway Station and Sri Anandpur Sahib Railway Station. The transformation of these stations is part of one of the world's largest station redevelopment programs, Amrit Bharat Station Scheme.
2: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
1: These railway stations are equipped with all modern facilities. The Prime Minister, who was accompanied by the Union Minister,

0: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश ठेर।
1: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना।

अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: 박명수
1: இந்திய அரசின் மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டு அமைச்சகம் பிரதான் மந்திரி ராஷ்டிரிய பால் புரஸ்கார் தேசிய குழந்தைகள் விருது 2026க்கான பரிந்துரைகளை வரவேற்கிறது.
2: வீரம், சமூக சேவை, சுற்றுச்சூழல், விளையாட்டு, கலை மற்றும் கலாச்சாரம், அறிவியல், தொழில்நுட்பம் ஆகிய துறைகளில் 18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளின் வியக்கத்தக்க சாதனைகளை அங்கீகரிப்பதற்காக வழங்கப்படும் மதிப்புமிக்க தேசிய விருது பிரதான் மந்திரி ராஷ்டிரிய பால் புரஸ்கார்.
1: தங்கள் பரிந்துரைகளை அனுப்புவதற்கான இணையதள முகவரி
2: https://awards.gov.in.
1: விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் ஜூலை மாதம் 31ஆம் தேதி.
3: சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி ஆங்கில செய்தி தொகுப்புகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
4: ஆகாஷ்வாணி சே சமாச்சார் சந்தியா கே சாத் மே பிரியங்கா அரோடா. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया. प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध. सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगी. नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया. गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु. और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया. उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से लोकार्पण भी किया. इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं. अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं. श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया. ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है. श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है.
5: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम

0: काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है।
0: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहाँ लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
1: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
0: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
2: आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1,800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
0: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही।
1: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ

0: भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
1: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारावपेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक RSS 800 सेवा, एकता और बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि RSS ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 पर बंद हुआ।
0: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और

0: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबार्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की चौथे नंबर की चीन के खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर होंगी। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट गैरी सोबर्स का निधन और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh. Flags off India's first hydrogen-powered train from Jind. Prime Minister says Centre is committed to ease of living and new opportunities for every citizen with the spirit of Nagrik Deva Bhava. Government convenes all-party meeting on Sunday ahead of monsoon session of Parliament. President Draupadi Murmu to embark on three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania from Sunday. Niti Aayog releases Investment Friendliness Index 2026. Gujarat emerges as the top performer, followed by Maharashtra and Tamil Nadu. Legendary West Indian cricketer Gary Sobers passes away. An Indian team announced for FIH Women's Hockey World Cup to be held in Belgium and Netherlands next month. Salima Tete named the captain. Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh today. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar this evening, the Prime Minister inaugurated and laid foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. Inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cant under the Amrit Bharat Station Scheme. Addressing a public gathering in Jalandhar, Prime Minister Modi said, the NDA government at the centre prioritises serving every citizen of India, making their lives easier and providing them with new opportunities for progress. He said it is the endeavour to ensure that every family, whether poor or middle class, receives the best possible facilities, and this spirit of Nagrik Deva Bhava is reflected in government's work.

का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आज स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने PGI चंडीगढ़ में PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259

0: मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में गुजरात देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। महान क्रिकेट ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स का आज 89 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते निधन हो गया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh today. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar this evening, the Prime Minister inaugurated and laid foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. He inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cant, under the Amrit Bharat Station Scheme. Addressing a public gathering in Jalandhar, Prime Minister Modi said, "The NDA government at the centre prioritises serving every citizen of India, making their lives easier and providing them with new opportunities for progress." He said it is the endeavour to ensure that every family, whether poor or middle class, receives the best possible facilities, and this spirit of Nagrik Deva Bhava is reflected in government's work.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना होंगी। एंडी बर्नहम को ब्रिटेन की लेबर पार्टी का नेता चुना गया, वे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वेस्ट इंडीज के दिग्गज क्रिकेटर गैरी सोबर्स का 89 साल की आयु में निधन। और अगले महीने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होने वाले FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को हरियाणा के भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: भारत में ही डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2,600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जींद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि यह यात्रा मध्य और पूर्व यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
3: ये राजकीय यात्राएं

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक तीन देशों मोल्दोवा उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा है कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
1: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा तीन दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
0: भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टैक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया है। चार दिन के सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी ने आज सीरिया, कुवैत और ओमान में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर जवाबी हमले किए। ईरान की समाचार एजेंसी ने आईआरजीसी के हवाले से कहा है कि ये हमले ऑपरेशन नसर 2 के तहत किए गए। समाचार एजेंसी ने दावा किया कि ईरानी सेना ने सीरिया के अल तनफ क्षेत्र में स्थित अमरीकी विशेष अभियान कमान केन्द्र पर अचानक हमला किया। एक रिपोर्ट।
1: इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि हमलों के पहले चरण में कुवैत में अमरीकी सेना के अड्डे पर स्थित एक अमरीका के मिसाइल रक्षा निगरानी रडार, कई हथियार डिपो, दो हिमर्स रॉकेट लॉन्चर और कई मिसाइलों को निशाना बनाया गया। आईआरजीसी ने सलमाह पठार पर स्थित एक नौसैनिक निगरानी रडार और ओमान के घनम क्षेत्र में स्थित एक अमरीकी हवाई निगरानी रडार पर हमला कर उसे नष्ट करने का दावा किया। इस बीच कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी हवाई रक्षा प्रणाली ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक रही है। लोगों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है। विश्व दर्पण के लिए विशाल शर्मा।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। एंडी बर्नहम को आज ब्रिटेन के सत्तारूढ़ लेबर पार्टी का नया नेता चुना गया। वे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। लेबर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति NEC के अध्यक्ष शबाना महमूद ने लंदन में आयोजित विशेष पार्टी सम्मेलन में यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि एंडी बर्नहम को 379 नामांकन प्राप्त हुए, जो नया नेता चुनने के लिए पर्याप्त संख्या थी। निवर्तमान प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर द्वारा औपचारिक रूप से सम्राट को अपना इस्तीफा सौंपा गया। इसके बाद बर्नहम को सोमवार को राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान के मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उसने चेतावनी दी है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस प्लस के अंतर्गत व्यापार लाभों तक पाकिस्तान की निरंतर पहुंच 2027 से संशोधित GSP ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि समीक्षा अवधि के दौरान पाकिस्तान ने GSP प्लस ढांचे के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में कमियां दिखाई। एक रिपोर्ट।
2: आकलन के अनुसार पाकिस्तान के कई क्षेत्रों में पिछड़ापन देखा गया है। इसमें जबरन गायब होने और गैर न्यायिक हत्याओं के मामलों में वृद्धि का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यायिक स्वतंत्रता और कमजोर हो गई है। ये भी कहा गया है कि जबरन श्रम एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इस आकलन में बलूचिस्तान और पंजाब में आतंकवाद विरोधी अधिनियम और संबंधित कानूनों में हाल ही में हुए संशोधनों का उल्लेख किया गया है। अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति पर बल देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें अभी भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यूरोपीय संघ ने पाया कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा अपराधों के अभियोजन सीमित हैं। पाकिस्तान का कानूनी ढांचा धार्मिक, जातीय और भाषाई अल्पसंख्यकों को पर्याप्त रूप से मान्यता या संरक्षण प्रदान नहीं करता। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: महान

0: क्रिकेट ऑलराउंडर सर गारफील्ड सॉबर्स का आज 89 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते निधन हो गया। सर गारफील्ड सॉबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। यह प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना होंगी। एंडी बर्नहम को ब्रिटेन की लेबर पार्टी का नेता चुना गया। वे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर गैरी सोबर्स का 89 साल की आयु में निधन। और अगले महीने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होने वाले FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi flags off India's first hydrogen-powered train from Jind railway station in Haryana. President Draupadi Murmu to embark on three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania from Sunday. Andy Burnham confirmed as Britain's Labour Party leader, set to become UK's new Prime Minister. Legendary West Indian cricketer Gary Sobers passes away at the age of 89. And Indian team announced for FIH Women's Hockey World Cup to be held in Belgium and the Netherlands next month. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today flagged off India's first hydrogen-powered train between Jind and Sonepat at Jind Railway Station in Haryana. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said that over the past 12 years, Indian Railways has witnessed major transformation. He noted that the launch of the country's first hydrogen train has given Jind a special place in India's history.
2: भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को, भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With an operational speed of 75 km per hour on the Jind-Sonepat section and a design speed of 110 km per hour, the train is not only safer but also faster on this 89 km section. Let's hear more from our correspondent.
3: With the introduction of hydrogen-powered train, India has joined the select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China and the United States. Most hydrogen passenger trains currently operating globally comprise only 2 or 3 coaches and are primarily deployed on short regional routes. In contrast, the Indian Railway train set has been configured as a 10-coach passenger train with a capacity of around 2,600 passengers, demonstrating the scalability of hydrogen-powered rail transport for high-capacity passenger operations. The train is powered by hydrogen fuel cell technology, which converts hydrogen into electricity to propel the train. The process produces only water vapor as a byproduct, resulting in zero carbon emissions during operation. Anand Kumar, Akashwani News, Jind.
1: President Draupadi Murmu will embark on state visits to Moldova, North Macedonia and Romania from 19th to 25th of this month. Briefing media in New Delhi, Secretary West in the Ministry of External Affairs, Sibi George, said, these state visits are being undertaken at the invitation of the Presidents of the Republic of Moldova, the Republic of North Macedonia and Romania.
4: These state visits are being undertaken at the

0: फोनी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें एसएएस नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में नाकाम रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने

आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आज के कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ एसपी शर्मा। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी शुक्रिया, थैंक यू।
1: और सबसे पहले सुनते हैं मुख्य समाचार।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस गेन ओवर 1%, सेंसेक्स एड्स नियरली 1000 पॉइंट्स एंड निफ्टी रिक्लेम्स 24,300 लेवल। एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड इन द नेगेटिव टेरिटरी एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज।
1: घरेलू शेयर बाजार आज 1% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की तेजी आई। निफ्टी ने 24,300 के स्तर को फिर से प्राप्त किया। एशियाई शेयरों में आज गिरावट का रुख और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़े।

0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज 1% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार की बात करें तो मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.2% की गिरावट आई। इससे पहले बाजार आज सुबह थोड़ी तेजी के साथ खुले थे और इंडेक्स की बड़ी कंपनियों में उछाल की वजह से पूरे सत्र के दौरान ऊपर की ओर बढ़ते रहे।
0: Benchmark domestic equity indices ended over 1% higher today. Sensex surged by 965 points to close at 78,151. Nifty gained 262 points to settle at 24,334. However, in the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index dropped 0.4% and the small-cap 100 index fell by 0.2%. Earlier, the markets opened on a moderately positive note and sustained their upward trajectory throughout the session, supported by gains in index heavyweights.
1: सेंसेक्स की बात करें तो आज 30 में से 24 कंपनियों के शेयरों में तेजी दर्ज हुई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में टेक महिंद्रा के शेयरों में 3.9%, कोटक महिंद्रा बैंक में 3.4% और टाटा कंसल्टेंसी में 3% का उछाल देखा गया। वहीं दूसरी तरफ सनफार्मा में 0.9%, कैंट में 0.7% और भारतीय एयरटेल में 0.6% की गिरावट आई।
0: In the sectoral indices on the BSE, 14 out of the 25 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, private banks as well as top 10 bank index jumped 1.8%. Mid-small private quality tilt index and BankEx rose by 1.6% and Realty added 1.4%. In contrast, telecommunications dropped 1.5%, capital goods dipped 1.3%, then healthcare lost 1.2%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,500 companies declined, 1,722 companies advanced, and 190 companies remain unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में

0: death at the BSE was negative as shares of 2,500 companies declined, 1,722 companies advanced, and 190 companies remain unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 7 पैसे ऊपर चढ़कर 96.28 रुपए पर बंद हुआ. एसपी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है.
2: जी शुक्रिया.
1: आज भारतीय शेयर बाजार में हमें उल्लेखनीय तेजी देखने को मिली है, तो आपकी नजर में इस मजबूती के प्रमुख कारण क्या रहे? क्या ये केवल निवेशकों की भावना है जो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही है, या फिर आर्थिक संकेतक भी इसके पीछे रहे हैं जो इस तेजी को आगे ले जा रहे हैं?
2: देखिए, आज का जो बाजार की जो मजबूती है उसके पीछे हमारे डोमेस्टिक स्ट्रेंथ है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे जो हेडविंड्स हैं, ग्लोबल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टसल है, वो अभी भी जारी है, बल्कि और डीपन हो रही है. यूएस और ईरान में जो वॉर है वो और इंटेंसिफाई हुई है. तो आज का जो बाजार, जो हमने कुछ दिनों से देखा कि बाजार एक मजबूती के दौर में आया हुआ है, उसके पीछे हमारा जो घरेलू एक सपोर्ट है, जो घरेलू एक हमारे नतीजे हैं, जो कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है. और दूसरा जो हमारे जो फंडामेंटल, जो अभी रिसेंट हमने देखा कि हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छे से ग्रो किए, जो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि आपका जो एक्सटर्नल रेजिलियंस कैसा है. और तीसरा, हमारा जो फॉरेक्स है वो बहुत स्टेबल है, भले ही रूपी के ऊपर अभी प्रेशर है बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्योंकि क्रूड में तेजी देखी गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से. वहां पे वापस एक जो प्रॉब्लमेटिक जो सिचुएशन सामने आई है, तो जिसकी वजह से क्रूड प्राइसेस बहुत ही प्रेशर में आए हैं और रूपी के ऊपर उसका प्रेशर हमें आते हुए दिखाई दिया. लेकिन जो ओवरऑल हम कहेंगे कि जो सेंटिमेंट है वो बहुत ही पॉजिटिव है. उसके पीछे जो पहले एक ऐसी आशंका थी कि ये जो क्वार्टर है, जो अप्रैल से जून तक का जो क्वार्टर है, इसमें बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि फेवरेबल नहीं है. युद्ध हुआ और अभी भी जारी है, तो इनका इम्पैक्ट आएगा, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा. तो वैसा एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है. हमें एक बहुत ही स्टेडी जो ग्रोथ है वो हमारे जो बिजनेसेस ने इस दौरान भी की है.
0: डॉक्टर शर्मा, वी हैव आल्सो सीन दैट Nifty Bank went up by 1%, and you mentioned about corporate results. The first quarter results are now out, and we can see about 4 banks have declared positive results as well. What has been the reason behind banking performance at the fundamental level for our economy?
2: Yes, Arjun, because our banks are very resilient and strong, and our economy is growing significantly. Because with this support of the growth, banks are always performing better as compared with the previous quarters or the year on year. Because we are moving ahead. We are growing at around 7%. Last year we grew at 7.7%. For the current year also, again, we are expecting that growth will be somewhere between 6.5 to 7%. So this is the economic activity which is happening and supporting the banking sector trajectory. And second, our banks are very, very resilient. They are not facing any headwind or some repercussion of such developments at the West Asia level. Otherwise, many countries are facing such kind of problems like the banking stress. But in India, our banking system remains very, very strong at every crisis. Whether the coronavirus or the before that Lehman crisis or now the geopolitical crisis. So banks are always very strong.
0: So there's no liquidity issue basically as far as
2: banking. I don't see any liquidity issue. Liquidity is adequate in the system. Yes.
0: But IT index saw a rise today by 1% as well. How do you see their results coming out in the first quarter?
2: Yes, Arjun, this is very important. Earlier, there were many apprehensions that AI is now impacting the trajectory of IT companies or undermining the growth of the IT companies because they will not be able to perform in the era of artificial intelligence. But I always provided my views, my positive view that there is no impact of the AI on the IT companies. If the IT shares are declining somewhere or sometime, that is the impact of Middle East crisis only or the fluctuation in the exchange rates. So that is proven now because IT companies are providing very good results, and that is in

0: front of us. And going forward, I don't see any impact of the AI on the IT companies, because these are two separate segments. There is no correlation that if the AI is moving ahead with a lot of investments, and that will impact the trajectory of the IT companies. These both are, I believe, the complementary segments go hand in hand to support the economy.
1: एसपी, अगर पिछले सप्ताह की हम तुलना करें वापस मार्केट की हम बात करते हैं, तो इस सप्ताह एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है, तो जिसमें एफआईएस और डीआईएस की दोनों की भूमिका को सराहा गया है कि हाँ, दोनों ने काफी पैसा भी मतलब निवेश किया है. और साथ में एक और प्रश्न मेरा यहाँ पर यह कि स्मॉल कैप और मिड कैप में लगातार हम गिरावट भी देख रहे हैं.
0: देखिए, इसमें ऐसा है, पहले तो जो इन्वेस्टमेंट है, जो एफआईआई और डीआईए का इंडिया में जो रुख है, वो ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन बीच में कुछ फ्लक्चुएशन आती है. खास करके एफआईआई काफ़ी सेंसिटिव है टुवर्ड्स द ग्लोबल डेवलपमेंट्स. जब भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट, नेगेटिव डेवलपमेंट्स होती है, देन दे पुल देयर मनी, एंड व्हेन देयर इज सम पॉजिटिव डेवलपमेंट, देन दे पुट अ सिग्निफिकेंट मनी इन द मार्केट. तो कुल मिला के जो है, उनका रवैया एक बैलेंस्ड रहता है. एक फ्लक्चुएशन बहुत होती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ऑन एन एवरेज दे आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट.
1: बैलेंसिंग
0: दे आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट. दे आर द ग्रेट इन्वेस्टर्स. दो आवर मार्केट्स आर सपोर्टेड बाय द रिटेलर्स. अभी तो हमारे ऊपर एफआईआई का कोई इतना ज्यादा प्रभाव नहीं होता, क्योंकि हमारा रिटेल सेगमेंट ही बहुत तेज गति से सपोर्ट करता है. जो हमारे रिटेल ट्रांजेक्शन है, वो ही बहुत अच्छे सिग्निफिकेंट लेवल पे है. और दूसरा जो आपका प्रश्न है कि जो स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स, एक्चुअल में जब एक मार्केट में चर्निंग होती रहती है, कई बार जो इन्वेस्टर है वो देखता है कि उसको जो लार्ज कैप्स हैं उसमें बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन देयर इज सम प्रेशर ऑन दी स्मॉल कैप और मिड कैप, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है.
1: ओके,
0: मैं अपना चर्निंग करके कुछ अपना मनी प्रॉफिट बुक करके उधर शिफ्ट कर लेता हूँ. लेकिन ओवरऑल जैसे एफआईआई और डीआईएस का मैंने बताया, इनमें भी एक बैलेंस जो है वो निरंतर बना रहता है. जो स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स हैं, वो अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी में देखेंगे, दीज आर ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली. स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स में ओवरऑल ग्रोथ जो है लॉन्ग टर्म के, मीडियम टू लॉन्ग, हाँ शॉर्ट टर्म में जरूर कुछ फ्लक्चुएशन हो सकती है. दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ देयर वीकनेस, एक्चुअली दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेफरेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स. They are sometimes they invest in the blue chips and sometimes they invest in the small and mid caps.
2: So speaking of blue chips and selective stocks, you've seen that index heavyweights, as it is mentioned in the story as well, gains in index heavyweights. A company which has a great deal of business in the oil and gas space and has a weightage of 9 to 12%. On the Sensex went up by 2%, and as a result we saw the Sensex also go up. What is the prospect in the oil and gas sector?
0: Prospects are very strong, because we are gaining great competitiveness and strength in this segment, and we have many reforms in our domestic economy to make this sector more and more resilient and competitive, and we have great possibilities to expand the businesses in this segment, and that's why I believe this is the one of the great promising sectors of the Indian economy. And as you said, the strength of the blue chips, because many of the companies are showing the positive results. Now, on an average, I believe the trajectory is somewhere between 10 to 12, 15% in the growth numbers. So this is very good in the era of such kind of developments at the global level, headwinds and geopolitics. We are growing significantly in the double digits.
1: और आगे बढ़ते हैं. एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज गिरावट देखी गई, क्योंकि सेमीकंडक्टर शेयरों में लगातार नुकसान से पूरे क्षेत्र में निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है. ताइवान का ताइएक्स 6.5%, जापान का निक्केई 4%, चीन का शंघाई कंपोजिट 3%, हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1.8% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स लगभग 0.5% नीचे आ गया. वहीं दक्षिण कोरियाई बाजार आज छुट्टी के कारण बंद रहे. एसपी, अगर एशियाई बाजारों की हम बात करें तो लगातार एक बड़ा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है, और सेमीकंडक्टर शेयरों का यहां पर जिक्र करना जरूर हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वहां पर भी लगातार गिरावट देखी जा रही है. तो ऐसे में क्या लगता है कि किन कारणों की वजह से ये गिरावट हो रही है?
0: देखिए, जो एक तो वापस जो जो युद्ध है, जो वॉर है, वो इंटेंसिफाई हुई है मिडिल ईस्ट में, और दूसरा जो

0: मैंने बताया कि इंडिया का मार्केट रेजिलियंस के बेसिस पे डोमेस्टिक रेजिलियंस के बेसिस पे ग्रो कर रहा है. अदरवाइज जो हेडविंड्स हैं वो वापस रिजुविनेट हो गई हैं. जो पहले हम देख रहे थे एक शांति का माहौल बन रहा है, बातचीत है, यूएस और ईरान में बातचीत होने वाली है या हो रही है या फिर आने वाले टाइम में हो सकती है, वो अब सब काफी संभावनाएं जो है वो धुंधली नजर आ रही हैं. उनमें कुछ अब ऐसे क्लियर कट हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि ये किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, बल्कि जो युद्ध है वो प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया शेप ले रहा है. लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जो है ऐसे वातावरण में भी बहुत अच्छे से रेजिलिएंट शो कर रही है. जैसे आपने बताया कि ये इकोनॉमीज जो है इमर्जिंग मार्केट्स आर फेसिंग द फ्लक्चुएशंस, वो बात वो युद्ध का सीधा प्रभाव है कि मार्केट्स कोई डायरेक्शन नहीं ले पा रही हैं. जैसे आज के दिन कुछ भी स्टेटमेंट आएगा यूएस की तरफ से तो पॉजिटिव है स्टेटमेंट, तो मार्केट्स एक पॉजिटिव मोड में आ जाएंगे. कुछ उसमें नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव चले जाएंगे. तो उनका एक सस्टेन्ड जो रवैया जो वो नहीं बन पा रहा है.
1: अभी अगर चाइना के मार्केट की हम बात करते हैं तो वहां पर देखा जा रहा है कि लंबे समय से शेयर बाजार में उथल पुथल सी स्थिति देखी गई है. तो निवेशकों की क्या चिंता बढ़ रही है चाइना के मार्केट में पैसा लगाने में, वो एशिया के जो दूसरे मार्केट्स हैं या भारत का रुख कर रहे हैं?
0: देखिए, भारत तो एक प्रॉमिसिंग इकोनॉमी है ही. भारत की तरफ जो रुख है वो तो हमेशा बना रहेगा और आने वाले टाइम में ये रुख और मजबूत होगा, क्योंकि हमारी जो रिफॉर्म्स हैं जो हमने पिछले काफी वर्षों में की, 10-12 वर्षों में की, उनके अभी हम रिजल्ट देख रहे हैं. पोस्ट कोविड ईयर्स में उनके बहुत ही विजिबल रिजल्ट आने शुरू हुए, जो कि 21-22 से लेके हम 25-26 तक ऑन एन एवरेज 7% से ऊपर ग्रो किए हैं. और ऐसी अवस्था में हमारा एक्सपोर्ट का अगर आप पिछले 3 महीने में देखेंगे, अप्रैल, मई, जून, तो एवरेज जो है 13% बनता है. एक बहुत बड़ी चीज है कि ऐसे माहौल में जब ग्लोबल इकोनॉमी इज इंपैक्टेड बाय सो मेनी हेडविंड्स, डिमांड इज डिसेलरेटिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑल्सो डिसेलरेटिंग, इंडियाज एक्सपोर्ट्स आर ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली इन दी हाई डबल डिजिट, तो एक बहुत बड़ी चीज है. और लेकिन जब चाइना का भी अगर हम आप 2026 से लेकर 30 तक का एवरेज ग्रोथ रेट देखें, दैट इज लेस देन 4%. इंडिया इज 6.5-6.6%. आप अंतर देखिए कितना है. तो चाइना का स्टोरी काफी डिमिनिश हो रहा है. और जो उसके टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स हैं, जैसे अभी आपने बात किया कि जो सेमीकंडक्टर के शेयर्स में वो एआई का जो एक कई बार बहुत ही एम्पलीफायर इंपैक्ट आता है कि एआई से जो स्टॉक्स हैं उनको बहुत बढ़त मिलेगी. और एक बार में फिर कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है कि जी शायद उस तरीके से ये आगे नहीं ग्रो की है, तो प्राइसेस इंपैक्ट होते हैं.
2: Let's have a look at the foreign exchange reserves now.
1: जी हाँ, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 10 जुलाई को खत्म हुए सप्ताह में आंशिक रूप से 964 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 675.1 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है. भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इस सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा संपत्ति 930 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 546.5 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई है. और सोने का भंडार 24 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 105.2 अरब अमेरिकी डॉलर का हो गया है. एसपी, अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे फॉरेक्स रिजर्व की, ऐसे में ये जो आंकड़े हैं थोड़ा बहुत मतलब हमें ये दर्शाते जरूर है कि भारत की जो स्थिति है और गति है पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रही है.
0: जी, मैंने बताया आपको कि जो फॉरेक्स है वो बहुत मजबूत है और अभी ये हमने न्यूज देखी है कि बहुत अच्छे से बढ़े हैं, तो ये काफी वीक से इनमें बढ़ोतरी है. तो मैं समझता हूं कि अगर आपका फॉरेक्स स्ट्रांग है एंड यू आर ऑल्सो स्ट्रांग इन द एक्सटर्नल सेक्टर इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपोर्ट्स, कैड आपका कंट्रोल में है, तो ये तीनों चीजें मिलके, कैड कंट्रोल में हो, फॉरेक्स आपका स्टेबल हो और तीसरा एक्सपोर्ट्स आर रेजिलिएंट, तो बहुत अच्छी बात पूरे देश की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट है जो इकोनॉमी की रेजिलियंस को और फॉरेन अट्रैक्टिवनेस को और इंक्रीज करता है.
1: Right.
2: Moving on to more news. The Office of Economic Advisor, OEA, Department for the Promotion of Industry and Internal Trade will release the revised series of the Index of Core Industries, ICI, with a base year of 2022-23 on the 20th of this month. The Ministry of Commerce and Industry said that the revised series will replace the existing ICI series with a base year of 2011-12. The ministry said that iron ore has been included as a core industry in the revised ICI series, citing its extensive use in industrial production and a significant contribution to industrial development. With this addition, the number of core industries has increased from 8 to 9. Now, how do you see the inclusion of iron ore really redefining how we look at core industry data and, for that matter, factory output?
0: Yes, Arjun, these are very

0: ज्यादा ये मुश्किल हो रहा है जो तेल का निर्यात करते हैं।
1: जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जो निर्यात करते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम आशा कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में वापस कुछ ऐसा पीस प्रोसेस हो, कोई ऐसी अनाउंसमेंट ट्रंप साहब से आए कि जिससे वो फिर बातचीत करने की बात में ईरान को बोले और दोनों एक टेबल पर आए और कुछ फाइनल हो। बट इस जंक्चर पे जो सिचुएशन है दैट इज नॉट फेवरेबल फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी।
2: Moving on to the bullion market. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 0.3% up at 1,41,170 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.1% down at 2,15,740 rupees per kilogram a short while ago.
0: Multi commodity exchange mein agast anubandh wala sona 0.2% upar aakar 1,46,576 rupees prati 10 gram par karobar kar raha tha, jabki September anubandh wali chandi 0.4% niche aakar 2,15,070 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। एसपी, जिस तरह से सोने का एक ट्रेंड सा चल रहा है, बहुत ही संभलते हुए अपना एक दिशा की ओर आगे ले जाता है तमाम चीजों, खासतौर पर अगर निवेशकों की दृष्टि से हम देखें तो निवेशक शायद अपना पैसा ये सोच करके इन्वेस्ट कर रहे हो कि बहुत ही संभल करके हम इसमें चल सकते हैं मार्केट के बजाय।
1: जी बिल्कुल, बिकॉज गोल्ड एक स्टेबल कॉमोडिटी है, बट शॉर्टर पीरियड में कई बार बहुत फ्लक्चुएट भी करती है, तो इन्वेस्टर को इसमें बड़ा सोच समझ के चलना होगा कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स तो अच्छे हैं बट शॉर्ट टर्म में कई बार बहुत ही फ्लक्चुएट होके जो लोग इसमें स्पेकुलेशन करना चाहते हैं उनको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसमें एक स्टेबिलिटी माइंड में लेके चलना होगा कि अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक उस स्टेबिलिटी के साथ सोचना होगा, अदरवाइज क्योंकि ग्लोबल फ्लक्चुएशन इतनी है, इतने ज्यादा हर रोज अनाउंसमेंट्स हैं, आप देख रहे हैं कि जैसे क्रूड में फ्लक्चुएशन आती है, डॉलर में फ्लक्चुएशन आ रही है, तो गोल्ड भी उन्हीं चीजों में, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स।
0: एसपीएस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी शुक्रिया, थैंक यू।
2: And now our closing headlines in English. Benchmark domestic stock market indices gain over 1%. Sensex adds nearly 1,000 points. Nifty reclaims 24,300 level. Asian stock market indices end in the negative territory. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
0: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं रोहिणी लेकर गीत मेरे मन में एक बार फिर से स्टूडियो से साथ हूँ दोस्तों। और दोस्तों बड़े प्यारे एहसास आपसे साझा करूंगी और सदाबहार गीतों का साथ भी बना रहेगा। आपने कभी महसूस किया होगा कि कई दर्दों की गहराई कभी कभी केवल आंखों में आए आंसू से नहीं मापी जाती, बल्कि कई बार सबसे गहरी नमी पलकों के पीछे रह जाती है और पलकों के पीछे से गहराई को बताने का ये गुनगुनाता अंदाज अब तक मैं पहुंचाऊंगी इस आपके गीत मेरे मन मीत में। और जिसे आप सुनेंगे 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, ये गीत जो कि है तलाश फिल्म से। इस गीत को आवाज दी लता जी और रफी जी ने, इस गीत को अल्फाज दिए मशरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत एस टी बर्मन साहब का। तो आइए सुनते हैं, आगाज करते हैं गीत मेरे मन मीत का इस गीत के साथ।

0: திரைக்கணம் நிறைவுபெற்றது. இனி தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देव भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
2: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जोड़ने की अपील की।
2: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने PGI चंडीगढ़ में PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने कल नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी नल्लू ने

लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य में जनगणना 2027 का शुभारंभ किया। देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना का पहला चरण 31 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान आंकड़ों के संग्रह, सत्यापन और निगरानी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तथा वेब आधारित प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: زبير. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया. उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया. श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया. ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देव भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है. श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है.
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है. पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है.
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है. श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की. इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया. प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया. उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी. हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया. श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया. सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी. नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल फिनलैंड की यात्रा के दौरान वहां के प्रमुख प्रौद्योगिकी और औद्योगिक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें की. नोकिया कॉरपोरेशन के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बैठक में उन्होंने अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों 5G और 6G, डिजिटल अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा की. केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवाओं को कर्तव्य भाव, सेवा और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर विकसित भारत 2047 के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया. डॉक्टर मांडविया कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित मेरा युवा भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. पश्चिम बंगाल के स्वर्ण सुवर्ण रेलवे स्टेशन के पास स्कूल वैन और यात्री ट्रेन के टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है. हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है. सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हिमाक्षी.

0: मोहनांगी।
1: ओ मोरी बुलबुल, ओ मोरी प्यारी, अरे आ जा इधर मोरी जान, मैं तो दिल्ली का बांग का जवान।
2: अच्छा दिल्ली का बांग का जवान, नान बड़नाट नहीं मावेन। हलवा पूरी गरम जलेबी गुलाब जामुन बालू शाही पेड़ा बर्फी तुझे चाहिए किलो अभी बना।

0: போயா கிழிச்சவாயா ஏற்றாயா ஏற்பாயா வேணுமாயா
1: தேரே கர்

0: रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भवः की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मध्य प्रदेश के इंदौर और मंदसौर में कई स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। ये अभियान लगभग 70 करोड़ रुपए मूल्य के 70 किलोग्राम एमडीएमए ड्रग्स की कथित तस्करी से संबंधित जांच के सिलसिले में चलाया गया। ईडी ने बताया कि ये जांच इंदौर अपराध शाखा द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की जा रही है। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए हैं। साथ ही आरोपियों की संपत्ति और वित्तीय लेनदेन से संबंधित विवरण भी प्राप्त हुए हैं। कई दस्तावेज और डिजिटल उपकरण फॉरेंसिक जांच के लिए जब्त किए गए हैं। चीन के दक्षिणी पश्चिमी शहर चोंगजिंग में कल हुए भूस्खलन में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 34 लोग लापता हैं। सरकारी मीडिया के अनुसार बचाव दलों ने मलबे से 10 लोगों को जीवित निकाला जिनमें 2 की हालत गंभीर है। सरकारी प्रसारक सीसीटीवी ने बताया कि ये भूस्खलन सुबह चोंगजिंग के पेंगशुई काउंटी में हुआ। चट्टानों और मिट्टी का विशाल मलबा पहाड़ी से नीचे गिरा और 10 से अधिक रिहायशी इमारतें इसकी चपेट में आ गईं। घटनास्थल पर 800 से अधिक बचावकर्मी राहत और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर ऑलराउंडर सर गारफील्ड सॉबर्स का कल 89 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते निधन हो गया। सर गारफील्ड सॉबर्स ने 93 टेस्ट मैचों में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh yesterday. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region.

0: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டு ரசித்த இந்த நிகழ்ச்சி 100.1 FM கோல்டு வழங்கிய நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முஹம்மது ஜுபேர். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया. उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया. श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया. ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भवः की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है. श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है.
2: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब

0: में काम कर रही है, पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर कल सिलीगुड़ी पहुंचे। बागडोगरा हवाई अड्डे पर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया। श्री शाह आज जुमागाछ में बीएसएफ की 18वीं बटालियन की सीमावर्ती चौकी का दौरा करेंगे। बीएसएफ के जवानों से बातचीत के अलावा श्री शाह प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा एक वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लेंगे। वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद गृहमंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्तोनिया की राजधानी टालिन में एस्तोनियाई विदेश मंत्री मार्केस साहकना से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, डिजिटल बदलाव, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में भारत एस्तोनिया सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में टीम अरुणाचल के 10 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश ने प्रमुख बुनियादी ढांचा और संपर्क परियोजनाओं के माध्यम से विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हिमाक्षी पंवार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh yesterday. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar last evening, the Prime Minister inaugurated and laid foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. He inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cant, under the Amrit Bharat Station Scheme. Addressing a public gathering in Jalandhar, Prime Minister Modi said, "The NDA government at the centre prioritises serving every citizen of India, making their lives easier." Prime Minister also flagged off Sant Ravidas Express train from Jalandhar Cant railway station. He also inaugurated national highway projects, including a 4-lane greenfield

0: 100.1 FM கோல்டு வழங்கிய இனிய ராகம் நிகழ்ச்சியில் சுப்ரோட்டோ ராய் சௌத்ரி அவர்களின் சிதார் இசை, அதனைத் தொடர்ந்து பத்மா தல்வாக்கர் அவர்களின் பாட்டு கேட்டு ரசித்தீர்கள். நேரம் 3:59:50. இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देव भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
2: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार

0: सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर कल सिलीगुड़ी पहुंचे। बागडोगरा हवाई अड्डे पर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया। श्री शाह आज जुमागाछ में बीएसएफ की 18वीं बटालियन की सीमावर्ती चौकी का दौरा करेंगे। बीएसएफ के जवानों से बातचीत करने के अलावा श्री शाह प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा एक वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लेंगे। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्व यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश में आज और कल 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच मध्य पूर्व में संघर्ष और तेज हो गया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों ने आज एक दूसरे के बुनियादी ढांचे और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स का कल 89 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण निधन हो गया। सर गारफील्ड सोबर्स ने 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh yesterday. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar last evening, the Prime Minister inaugurated and laid the foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. He inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cant, under the Amrit Bharat Station Scheme. Addressing a public gathering in Jalandhar, Prime Minister Modi said the NDA government at the centre prioritises serving every citizen of India, making their lives easier. Prime Minister also flagged off Sant Ravidas Express train from Jalandhar Cant Railway Station. He also inaugurated national highway projects including a 4-lane greenfield, Delhi Amritsar Katra Expressway and laid the foundation stone for the development of 6-lane greenfield Southern Ludhiana Bypass. Earlier, the Prime Minister flagged off India's first hydrogen power train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station in Haryana yesterday. Prime Minister also laid the foundation stone and dedicated several development projects to the nation of worth over 14,000 crore rupees, including national highway projects in Haryana. In

0: காலை 6:10 தேனிசை பக்தி பாடல்களின் தொகுப்பு. பக்தி பாடல்கள் வழியாக இறைவனை வழிபடும் நேரம் 6:10. இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் அதனைத் தொடர்ந்து ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का भी शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण किया। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को भी रवाना किया। यह अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
2: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। इससे पहले हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को भी रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर कल सिलीगुड़ी पहुंचे। बागडोगरा हवाई अड्डे पर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया। श्री शाह आज जुमाकाच में बीएसएफ की 18वीं बटालियन की सीमावर्ती चौकी का दौरा करेंगे। बीएसएफ के जवानों से बातचीत करने के अलावा श्री शाह प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा एक वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लेंगे। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 138 किलोमीटर से अधिक लंबाई की तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से भूमि पूजन करेंगे। इन परियोजनाओं में 53 किलोमीटर से अधिक लंबी पुणे शिरूर 6 लेन सड़क, करीब 30 किलोमीटर लंबी हटपसर येवत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना और 24 किलोमीटर से अधिक लंबी तालेगांव चाकन शिकरापुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना शामिल है। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय की बचत होगी और यातायात जाम से छुटकारा मिलेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फिनलैंड की यात्रा के दौरान वहां के प्रमुख प्रौद्योगिकी और औद्योगिक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें की। नोकिया कॉरपोरेशन के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बैठक में उन्होंने अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों 5G और 6G डिजिटल अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। बैठक में भारत के दूरसंचार क्षेत्र में नोकिया की दीर्घकालिक भूमिका का भी उल्लेख किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने श्री हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त होने पर बधाई दी है। श्री रिजिजू ने एस मुनवारी बेगम को उपाध्यक्ष और गिलेन ई सूजा टिकलो को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य नियुक्त किए जाने पर बधाई दी। अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में टीम अरुणाचल के 10 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश ने प्रमुख बुनियादी ढांचा और संपर्क परियोजनाओं के माध्यम से विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। राज्य मंत्रिमंडल ने नागरिकों को बेहतर, सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य एवं कल्याण सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई नवाचारी पहलों को भी मंजूरी दी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना। और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: Earlier in the day, India got its first hydrogen-powered train when Prime Minister Modi flagged off the passenger service from Jind Railway Station in Haryana. The train will run between the Jind and Sonipat Railway Stations and cover the 89-kilometer distance in 2 hours. The government has refuted claims circulating on social media where Prime Minister Modi is promoting an investment platform.